0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:58 और 30 सेकेंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। आपका दिन शुभ हो।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी समाचार। आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 और 20 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

तभी किसी पत्रिका में उड़िया की एक कहानी का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। गांव में अकेली रह रही वृद्धा माँ को बेटा शहर ले आता है। वृद्धा माँ नेम टेम वाली, नियमित भजन कीर्तन करने वाली, पूजा पाठ करने वाली, नियमित मंदिर जाने वाली। बेटा शाम को शहर पहुंचा है माँ के साथ। परेशान है, किसे अपना दुख कहे। जिस मोहल्ले में उसने किराए का घर ले रखा है उसमें करीब ठीक ही कहीं मस्जिद है। भोरे उसमें तार सप्तक में अजान दी जाती है, आवाज यहां तक आती है। माँ जब सुनेगी तो कैसी चिढ़ जाएगी, कहां ले आया मुझे उठाकर। पति पत्नी

चिंतित हैं, देर तक अपना दुख बतियाते हैं, चिंता में डूबे डूबे ही सोते हैं। भोर में किवाड़ पर दस्तक, माँ है, अजान दी जा रही है, अब क्या होगा, पर दरवाजा खोलना ही है। डरते सहमते बेटा किवाड़ खोलता है, माँ हर्षित है, आह्लादित है। अरे बेटा, कहीं पास ही मंदिर है क्या? कितने अच्छे मोहल्ले में तूने घर ले रखा है, कितना मधुर और सदा स्वर है गायक का, कितनी मीठी आवाज में भजन गा रहा है, जी जुड़ा गया। तन्मयता और श्रद्धा ऐसी कि औरों की दृष्टि में जो मस्जिद की अजान है, निश्चल मन में वह भजन है, अंतर तक भिगो देने वाला भजन है। क्या यही मधुमति भूमिका नहीं है? मेरे अग्रज एक भजन गाते थे, सिर धर मटुकिया डोले रे, ब्रज की ग्वालने दही बेचने अन्य गांव गई हैं, सिर पर दही की मटकी है, मन में हर घड़ी छाए रहने वाले श्याम। नतीजा, दधि का नाम भूल गई ग्वालिन, हरी ले बोले रे, लो सिर पर है दही और मन में है हरी, कहां दही याद रहा, हरी को बेचे जा रही है। यह नहीं कहती दही लोरे, कह रही है हरी लोरे, हरी लोरे, मुग्धावस्था का चरम। छाप तिलक धर दीनी या ऊधो मन तो एक माही, सो तो ले घनश्याम सिधारे, जोग सिखावन का ही कि आत्मा अवस्था कहने का अब होश कहां रह गया है, कहां सुधी है अजान में और हरि भजन में भेद करने का। मीरा के विषपान में लोग ईश्वर कृपा चमत्कार पाते हैं, जो राणा ने भेजा था वह तो मीरा के लिए एक पेय पदार्थ था, विष कहां था कि प्राण लिया। हृदय राम जो हुई तो भेद करने पर रखने की दृष्टि कहां रह जाती है। स्वर्गीय भोलानाथ पिंब की एक कविता है, श्रद्धा जब दिया जलाती है, प्रतिमा की पूजा भी ले जाती है, मंदिर भी उजियारा हो जाता है। नहीं बंधु, श्रद्धा जब श्रद्धा से दिया जलाती है तो कहां प्रतिमा कहां मंदिर, बाहर भीतर चारों ओर उजियारा ही उजियारा। सिर पर दही, मुंह में हरी ले, हवा में अजान के स्वर, कानों में भजन के मीठे बोल।

अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:10 में है प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

और इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। यह स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग विविधा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। 7:30 का समय होगा कार्यक्रम गीत संगीत का। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे हेलो हजारीबाग। 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

1:20 से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारी मुंबई केंद्र से। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02

मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। संध्या 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंगना। 6:30 का समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल, जिसे हम रिले करेंगे अपने राज्य केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी योजना। संध्या 7:30 पर सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत। रात्रि 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का। आज के अंक का रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 10:30 पर कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:54 हुए हैं। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणे

0: द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारम् अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमानमन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बाला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं, कुछ ही पल में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। सुबह के 7:20 और 50 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता मन के हारे हार है। वार्ताकार हैं संजोग कुमार।
1: मनुष्य के सभी इच्छाओं का केंद्र होता है मन। सभी इंद्रियों का नियामक और स्वामी भी मन ही है। इसलिए व्यवहार के स्तर पर उसकी हार को वास्तविक हार और जीत को सच्ची जीत माना जाता है। विद्वानों के अनुसार हर प्रकार की मानसिक दुर्बलता का उपचार है कि वह विपरीत दिशा में सोचना शुरू कर दे। जैसे मेरा व्यक्तित्व पूर्ण है, उसमें त्रुटि या कमजोरी कोई है तो मैं उसे दूर करके रहूंगा। यदि मुझमें कोई दुर्बलता है तो उसका ध्यान छोड़कर निर्मल शरीर और निर्मल मन का ध्यान करूंगा। मुझे ईश्वर ने अपना ही रूप बनाया है, उसने मुझे पूर्ण मनुष्य बनने की आज्ञा दी है। पूर्ण पुरुष परमात्मा की मैं रचना हूं, फिर मैं अपूर्ण कैसे हो सकता हूं? मेरे मन में जो अपूर्णता का विचार आता है वह वास्तविक कैसे हो सकता है? मेरे जीवन की पूर्णता ही सत्य है। मैं अपने अंदर कोई कमी नहीं आने दूंगा। बनाने वाले ने मुझे दीनहीन दुर्बल बनने के लिए पैदा नहीं किया, उसके संगीत में स्वर भंग कैसे हो सकता है? इस प्रकार निरंतर एवं बारंबार अपने मन में विचार दोहराते रहने से मनुष्य कर्म से अपने को सबल बनाता जाता है। लज्जाशीलता या झेप कई बार रोग की सीमा तक पहुंच जाती है। इसे एक प्रकार का मानसिक रोग कहा जाता है, परंतु यह रोग तो केवल कल्पना की

इस पर आसानी से विजय पाई जा सकती है। इसका उपाय यही है कि इस विचार को धकेलकर मन से बाहर कर दिया जाए और इसके विपरीत विचार मन में स्थान दिया जाए। मुझे झेपने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। हर समय चेष्टाओं को देखने की फुर्सत लोगों के पास नहीं है। इस प्रकार के विचार मन की सारी दुर्बलताएं निकालकर आदमी को निश्चय ही नया बल और स्फूर्ति देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वह ईश्वर की मौलिक रचना है और उनमें कुछ दिव्यता है। उस दिव्यता को व्यक्त करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। यह निश्चय मानसिक दृढ़ता से ही संभव हो सकता है। इसे मन दृढ़ करने की एक सफल क्रिया कह सकते हैं। हमें प्रत्येक संभव उपाय से बौद्धिक रूप में अपना सुधार करना आरंभ कर देना चाहिए। सर्वोत्तम लेखकों के ग्रंथों का अध्ययन करने से, विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने से हम अपनी कई प्रकार की त्रुटियां दूर कर सकते हैं। मन में हीनता की भावना निकल गई तो समझो सारी दुर्बलताएं समाप्त हो गई। अतः हमें हर संभव उपाय से मनोरंजक तथा आकर्षक व्यक्तित्व को प्राप्त करने की दिशा में अपने आप को अग्रसर करना चाहिए, तभी मन भी दृढ़ हो सकेगा। अपनी वेशभूषा के प्रति, केश श्रृंगार के प्रति, बातचीत के प्रति, बर्ताव के प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व के निर्माण तथा कार्यों में सफलता के लिए ये बातें सहायक होती हैं। इनसे मन भी बढ़ता है। कई बार हमारे सामने ऐसा कठिन समय आ जाता है कि हम मन से हारने लगते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि वस्तुतः हमारी परीक्षा का अवसर है। इंसानियत का इतिहास और प्रेरणा यही है कि वह हिम्मत ना हारे। कहा भी है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। यह सोचकर उस कार्य को करने में तन मन से डट जाना चाहिए। देर सवेर सफलता अवश्य मिलेगी। हम जो कुछ भी करते हैं, पहले मन में उसका ध्यान करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्य का प्रारूप हमारे मन में तैयार होता है। यदि हमारा मन दृढ़ता से उस पर विचार करता है तो हमारा चिंतन लाभकारी होता है। व्यवहार में भी दृढ़ता आती है और सफलता भी मिलती है। निराशा की भावना मनुष्य के मन और तन दोनों को दुर्बल बनाती है। इसे पास नहीं आने देना चाहिए। इतिहास तथा वर्तमान काल की घटनाओं से शिक्षा लेकर हमें अपने मनोबल का निर्माण करना चाहिए। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए जो बड़े से बड़े संकट में भी न घबराएं, डटकर कठिनाई का सामना करते हुए विजय हुए। उनका अनुकरण मानसिक दृढ़ता और विजय की सीढ़ी बन सकता है। अंग्रेजी की एक कहावत का अर्थ है कि इच्छा शक्ति ही सब कार्यों को सफल बनाती है। मन ही बंधन का कारण बनता है, मन ही मोक्ष का। मन को ऊंचा रखने वाला अवश्य विजयी होता है। अतः हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें हार की ओर नहीं, हमेशा जीत की ओर ही बढ़ना है और मन को दृढ़ निश्चय बनाकर हमें बढ़ते जाना है। सफल सार्थक जीवन व्यतीत करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। जीवित मनुष्य में आकांक्षाएं ना हो यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आकांक्षाएं जीवन के लिए आवश्यक होती हैं और मनुष्य स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सोचे सुलझे ढंग से लगातार परिश्रम की जरूरत हुआ करती है। क्योंकि महान व्यक्तियों ने ऊंचा पद प्राप्त किया है, वह अकस्मात छलांग लगाकर नहीं प्राप्त किया, बल्कि जिस समय उनके साथी सोते रहे उस समय सारी रात जगकर वे ऊंचे जाने, उन्नत होने का निरंतर प्रयास करते रहे थे। महत्वाकांक्षा की पूर्ति का एकमात्र साधन निरंतर प्रयत्न ही है। कुछ व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में उसी प्रकार असफल रहते हैं जिस प्रकार तीव्र वेगमान अश्व पर बिना अभ्यास के सवार होने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति। महत्वाकांक्षा की पूर्ति की आशा की वेग गति तरंग में जिन व्यक्तियों की सूद बुद मारी जाती है, जो एकदम छलांग लगाकर करोड़पति या सत्ताधारी बन जाने का प्रयास करते हैं, उनसे कई प्रकार के गलत काम हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा के कारण कई बार व्यक्ति न्याय अन्याय विचार को भुला देता है। वह विवेक की ओर से आंखें मूंद लेता है। परिणाम यह होता

0: आगे बढ़ना घोर अमानवता कही जाएगी। आज के अपवादापी वाले युग में इसी प्रवृत्ति की प्रधानता है। जिस समय हम अतिशय महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, उसी पूर्ति में जल्दबाजी करने लगते हैं, तो हमारे लिए कर्तव्य तथा अकर्तव्य में पहचान करना कठिन हो जाता है। भले बुरे का विवेक हमें नहीं रहता, न्याय और अन्याय में अंतर दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति इस प्रकार लालसा का शिकार हो जाते हैं, वे किसी प्रकार के पाप कर्म में भी संकोच नहीं करते। जो स्वार्थ के नशे में मदहोश हो जाते हैं, वे मानवता के अस्थाई मूल्यों की हत्या करते हुए भी नहीं झिझकते। सबसे ऊंचे बनने की ऐसी इच्छा एक भयंकर शक्ति बन जाती है, जो चरित्र का बलिदान करने से भी नहीं कतराती, अपने साथ साथ दूसरों का बुरा करने में भी नहीं झिझकती। उसका प्रयत्न वास्तव में सर्वनाशकारी बन जाया करता है। आपने जिस व्यक्ति को ऊंचा उठाना है, वह स्वयं आप हैं, और आपको पूरी छूट है कि आपको जहां से प्रेरणा मिले वहां से प्राप्त करें। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखें कि आपकी महत्वाकांक्षा से मानव हित की हानि ना हो।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 7:29 और 47 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संगीत।

0: आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:59 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जी
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
6: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
5: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संदिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे

0: एक शिक्षक की भूमिका थी, वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन Z का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के

0: हवाले से सुर्खी दी है। भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो ये बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bagged silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
3: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State governments and Union Territory administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on a day-to-day basis, with trials mandated to conclude within 3 months from the date the charge sheet is filed. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.

0: the headlines once again. Government to introduce public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Mirabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48 kg category. Rishikant Singh bagged silver in men's 60 kg class. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।
2: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन का किया ऐलान। नंदन नीलकणी करेंगे नेतृत्व। संसद में आज आएगा कानून। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील। कहा किसानों के मुद्दे पर सदन में सार्थक चर्चा हो। जेएसएससी ने परीक्षाओं पर स्थिति की स्पष्ट। कहा टीडीपीएल एजेंसी का किसी भी परीक्षा से कोई संबंध नहीं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम सक्रिय। झारखंड में मॉनसून होगा मजबूत। और रांची में डोरंड कप 2026 का भव्य आगाज। उद्घाटन मैच में जमशेदपुर एफसी ने डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय पारदर्शी होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।
1: भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: केंद्र सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और

0: पेपर लीक तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार आम आदमी को समर्पित है। गिरिडीह में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने 6 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी मिलते ही सीआईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी।
1: सार्थक अगर उनका प्रहार हो सरकार के ऊपर तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख से जो हाउस चल रहा है उस पर चर्चा करें, हाउस को डिस्टर्ब नहीं करें, शोर शराबे में ना डाल दें हाउस को। जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात, उन्होंने इस केस को हैंडओवर किया सेट, जांच भी चल रही है, काले कारनामे में उनका नाम भी सामने आ रहा है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है।
0: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट किया है कि टीडीपीएल एजेंसी का उसके किसी भी पूर्व, वर्तमान या आगामी परीक्षा के आयोजन या परीक्षा प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। टीडीपीएल एजेंसी को 25 मई में ही डी एम्पैनल कर दिया गया था। आयोग ने भ्रामक और तथ्यहीन खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पश्चिमी सिंहभूम में विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत आयोजित युवा संवाद में जिले के 20 माय भारत युवा स्वयं सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से सीमांत क्षेत्रों के विकास, सामाजिक सहभागिता और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। आकाशवाणी रांची अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसकी शुरुआत 27 जुलाई 1957 को हुई थी। यह केंद्र हिंदी के अलावा नागपुरी सहित झारखंड की कई स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। झारखंड में कुल 60 लाख रुपए के इनामी 16 कुख्यात माओवादी कल आत्मसमर्पण करेंगे। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी और 10-10 लाख रुपए के इनामी 3 जोनल कमांडर भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लगातार चल रहे माओवादी विरोधी अभियान और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में उग्रवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा के राजनगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरवा ने संगठन को और सशक्त बनाने पर जोर दिया।
2: सरायकेला खरसावां जिला कमेटी एक बेहतर प्रयास कर रही है संगठन के कार्यक्रम के माध्यम से। आने वाला दिन में इसका अच्छा परिणाम आएगा, जैसे गुरुजी का जयंती है, विमलदा का साधक दिवस, फिर रामदास जी का है, उसके बाद पार्टी संगठन का कार्यक्रम है। इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, इसके लिए चर्चाएं।
0: सिमडेगा पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बैंक खाते में जमा 3 लाख रुपए भी फ्रीज किए हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
3: अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके निशानदेही पर करीब 150 ग्राम सोना तथा 1 किलोग्राम चांदी को बरामद किया गया है। 3 लाख डिपॉजिट किए हुए थे बैंक में, उनको फ्रीज कर लिया गया है। औजार उन लोगों ने प्रयुक्त किए थे कांडों में, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी पूर्व में रहा है, 6 केसेस में पहले भी जेल जा चुके हैं, 11 केसेस इन लोगों के ऊपर है।
0: मौसम झारखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर अति गहरे निम्न दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से झारखंड के दक्षिणी हिस्सों विशेषकर कोल्हान रांची खूंटी गुमला और सिमडेगा में अगले 48 घंटों के दौरान घने बादल छाने और भारी बारिश की संभावना है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण का शुभारंभ कल रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हुआ। उद्घाटन मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। उद्घाटन समारोह में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर फ्लाईपास्ट पैरामोटर प्रदर्शन और सैन्य बैंड की प्रस्तुति ने दर्शकों को रोमांचित किया। मैच में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। ओमान के मस्कट में आयोजित यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतकर लौटे झारखंड के 6 खिलाड़ियों का आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय महिला टीम ने रजत और पुरुष टीम में स्वर्ण पदक जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टास्क फोर्स गठन की घोषणा वाली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, पेपर लीक रोकेगी हाई पावर टास्क फोर्स, नीले कड़ी होंगे अध्यक्ष। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 16 इनामी नक्सली कल करेंगे सरेंडर। दैनिक हिंदुस्तान की लीड है, डोरंड कप का आगाज, खेल के साथ दिखे देशभक्ति के रंग। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ऋषिकांत को रजत, मीराबाई चानू को गोल्डन हैट्रिक। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन का किया ऐलान। नंदन नीलकणी करेंगे नेतृत्व, संसद में आज आएगा कानून। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील, कहा किसानों के मुद्दे पर सदन में सार्थक चर्चा हो। जेएसएससी ने परीक्षाओं पर स्थिति की स्पष्ट, कहा टीडीपीएल एजेंसी का किसी भी परीक्षा से कोई संबंध नहीं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम सक्रिय, झारखंड में मॉनसून होगा मजबूत। और रांची में डोरंड कप 2026 का भव्य आगाज, उद्घाटन मैच में जमशेदपुर एफसी ने डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये
1: आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:43 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, पार्श्व गायिका के एस चित्रा का आज है जन्मदिवस। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: दोस्तों, के एस चित्रा का जन्म 27 जुलाई 1963 को केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था। इनका पूरा नाम है कृष्णा नायर शांता कुमारी चित्रा। ये एक भारतीय पार्श्व गायिका और कर्नाटक संगीत गायिका हैं। लगभग 5 दशकों के अपने करियर में उन्होंने भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, अवधि, मराठी, तुल्लू, ब्रज, बंजारा, उर्दू, असमिया, गुजराती, मणिपुरी और संस्कृत में कई गाने रिकॉर्ड किए हैं।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, चित्रा भारतीय संगीत के साथ साथ भक्ति और लोकप्रिय संगीत भी गाती हैं। इनको दक्षिण भारत की छोटी बुलबुल और केरल की बुलबुल भी कहा जाता है। सचमुच एक सुरीली आवाज जो मन को मोह ले।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 8:59 हुए हैं। आइए अब आपको ले चले हमारे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनाते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस फिल्म का गीत आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गरिमा वहाल और सिद्धार्थ सिंह ने इसे लिखा है, विकी प्रसाद का संगीत।

श्रोताओं, आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें आदरपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने, ज्ञान अर्जित करने और देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। उनकी सादगी, कर्मनिष्ठा और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। और आइए चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में साथ दिया है रोचक कोहली ने। कुमार ने इस गीत को लिखा है, संगीत रोचक कोहली का, फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत लुका छुपी इस फिल्म से, आवाज करण चेम्बी की और निर्माण ने इसे लिखा है, संगीत तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय का।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं वेद शर्मा की आवाज में मलंग फिल्म से। कुणाल वर्मा और हर्ष लिम्बाचिया का के बोल हैं और वेद शर्मा का संगीत।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।
5: और आइए अब आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। इस फिल्म का गीत अखिल सचदेव और मनशील गुजराल की आवाजें, गीत संगीत अखिल सचदेव का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: आओ आओ अब आए हो हाथ में।
2: अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक।
0: ये आवाज सुनकर आपने अनायास ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किसकी बातें हो रही हैं। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के निर्देशक की बातें हो रही हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के लेखकों की बातें हो रही हैं, तो भी आपका अंदाजा गलत है। पर अगर आपने ये सोचा है कि बातें उनकी हो रही हैं जिन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, तो आप एकदम सही हैं।
2: क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
0: अमजद खान, आज के फनकार।

अमजद खान एक बेमिसाल अभिनेता थे। वो नाटकों में अभिनय करते थे। उसी समय रमेश सिप्पी ने अमजद खान को स्टेज पर देखा और उन्हें ये लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का एकदम फिट बैठेगा। उन्होंने अमजद खान से दाढ़ी बढ़ाने को कहा, उन्हें गब्बर जैसे कपड़े पहनाए जो चोर

0: बाजार से खरीदे गए थे और फिल्म शोले की पूरी शूटिंग के दौरान इन कपड़ों को धोया नहीं गया था। इसके बाद तस्वीरें ली गईं, लुक टेस्ट देखकर लगा कि बिल्कुल सही अभिनेता का चुनाव किया गया है और इस तरह से अमजद खान बने गब्बर सिंह, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब जब शोले की बात होगी, अमजद खान के बिना इस फिल्म की कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी।
1: अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहां है रे दूसरा? हे फौजी, तेरा जोड़ीदार कहां है बता? अरे ओ फौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को? ठहरो, आओ आओ अब आयो हाथ में। आओ आओ शाबाश।
0: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और चूंकि उनकी छवि एक बहुत दबंग लड़के की थी, इसलिए उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें दादा कहकर पुकारा करते थे। वैसे आपको बता दें कि स्टेज के जरिए अमजद खान का फिल्मों में पदार्पण भले हुआ हो, पर बहुत पहले ही वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने लगे थे। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की थी। कहा तो ये भी जाता है कि सन 1965 में अमजद खान को उनके पिता जयंत बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे और स्क्रीन के लिए उनका नाम रखा गया था नीरज। ये फिल्म थी पत्थर के सनम। अनेक कारणों से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसका निर्माण अमजद खान के पिता जयंत कर रहे थे और निर्देशन कर रहे थे अमजद खान के भाई इम्तियाज खान। ये फिल्म अटक गई और अमजद खान की बतौर हीरो लॉन्चिंग भी हमेशा के लिए अटक गई। पर फिल्म शोले में जब अभिनेता डैनी ने गब्बर का रोल निभाने से इनकार कर दिया, और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फिरोज खान की फिल्म साइन कर रखी थी और उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना था। जाहिर है कि डैनी एक ही वक्त पर दो देशों में कैसे हो सकते थे। मजबूरी में उन्होंने फिल्म शोले छोड़ दी और इस तरह से किस्मत चमक गई अमजद खान की और शोले में उनके हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए और उन रोल्स में लोगों की बहुत प्रशंसा बटोरी। अरे काल

0: हरे बोल हरि हरि बोल।
1: वैसे आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और अमजद खान की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, मिस्टर नटवरलाल, नास्तिक, लावारिस, बरसात की एक रात, कालिया, राम बलराम, कस्मे वादे, खून पसीना, परवरिश, देशप्रेमी वगैरह। फिल्म बरसात की एक रात का ये संवाद सुनिए।
2: कौन? कौन?
3: डर गए क्या? कसम भैरों की मैं कोई भाग या भाग।

0: कालू नहीं हूँ, काली राम हूँ, काली राम।
1: यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं?
0: अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया।
1: यहाँ पे कोई काम नहीं
0: है। है काम है, देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर।
1: कहा था आपको लाने के लिए, मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए।
2: क्या हुआ बेटी?
1: बाबा
2: क्या हुआ?
1: देखो
2: काली बाबू, आप
0: यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नकदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी।
3: साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए ये सब।
0: वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की, बड़े बाबू 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद
3: रिश्वत देना चाहते हैं आप?
1: पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं?
0: बस बस बहुत हो गया, बड़े बाबू इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे, वरना।
3: तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से।
0: मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था, आप पैसे लेंगे काम करेंगे, नहीं लेंगे नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है, कसम भैरों की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदी नहीं।
4: यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमजद खान ने हमेशा नेगेटिव भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने काफी पॉजिटिव भूमिकाएं भी निभाई हैं, जैसे फिल्म याराना में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे।
0: तू सीखेगा मेरे दोस्त, तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त।
5: घर में है?
0: मैं
5: आदाब सर विशन साहब,
0: आइए आइए सेठ जी आइए।
3: नमस्ते सेठ जी।
0: नमस्कार, दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो।
6: इतने बड़े स्टेडियम में, और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है।
7: और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू, तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
0: ऐसे नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी।

0: क्या आपको पता है कि अमजद खान ने बहुत सारी आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्में भी की हैं। यहां आपको ये बता दिया जाए कि सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाई थी सन 1977 में। इस फिल्म में अमजद खान और संजीव कुमार एक साथ नजर आए थे। अमजद खान ने इस फिल्म में नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई थी।
1: आप सब ने हमें धोखा दिया है, आप सब ने। हमने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप सब पर भरोसा किया। हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां आप सबको सौंप दी, और आप लोगों ने क्या किया सिवाय अपनी जेबें भरने के? क्या किया है आपने? कुछ नहीं। सलीमन साहब ने कहा भी था इन सब लोगों से होशियार रहना, हमने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि वो सच कहते थे।
0: इसी तरह से सन 1979 में आई गुलजार की फिल्म मीरा, इसमें अमजद खान ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। सन 1984 में आई फिल्म उत्सव में अमजद खान वात्स्यायन बने थे। यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म लेकिन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमजद खान ने। और जब बात आर्ट हाउस सिनेमा की हो रही है तो हम फिल्म रूदाली को कैसे भूल सकते हैं। एक यादगार रोल था अमजद खान का फिल्म रूदाली में।

जहां तक हल्की फुल्की भूमिकाओं की बात है तो फिल्म चमेली की शादी सन 1986 में आई थी। इस फिल्म को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: फिल्म।
1: याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मा कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। याराना का ये गाना सुनिए।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने एक समय में कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जैसे उन्होंने फिल्म चोर पुलिस बनाई थी जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अमीर आदमी गरीब आदमी, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई थी जिसका नाम था लंबाई चौड़ाई, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिल्म रूदाली अमजद खान के आखिरी रोल्स में से एक बन गई। सन 1986 में अमजद खान का मुंबई गोवा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही अमजद खान का वजन बहुत बढ़ने लगा था। वैसे भी वो चाय के बहुत शौकीन थे और दिन भर में कई कप चाय वो पी जाते थे। इसका भी उनके वजन पर गहरा असर पड़ा। सन 1992 में दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। एक सशक्त अभिनेता इस संसार से चला गया। रह गई उसकी फिल्में, उसकी आवाज में उसके संवाद और उसकी यादें।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमजद खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

हेलो हजारीबाग, आज के इस सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजुना का नमस्कार। श्रोताओं, वक्त चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। आज तारीख है 27 जुलाई 2026 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की 5वीं तिथि। तो सावन की इस हरियाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे विचार मनुष्य के जीवन को सरल बनाते हैं। कहा भी जाता है कि दिन की शुरुआत करें सुविचार के साथ, ताकि एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने कामों को कर सकें। श्रोताओं, जीवन एक यात्रा है जिसमें चुनौतियों का सामना करना और अपने सपनों को साकार करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा प्रेरणादायक उदाहरण भी हमें नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकता है। सकारात्मक सोच और सफलता के लिए किसी बात से प्रेरणा लेना एक शक्तिशाली साधन है जो हमारी आत्मशक्ति को जगाते हैं और कठिन समय में हमें प्रेरित करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें, निरंतर ज्ञान अर्जित करें, कड़ी मेहनत करें और महान जीवन को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प रखें।

श्रोताओं, आज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि। श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा था, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना सीखें। उनकी जीवनी की ओर देखें तो संघर्ष से भरा था उनका बचपन, लेकिन उन्होंने ज्ञान का रास्ता चुना और आगे चलकर एक सफल वैज्ञानिक बने। 1969 में डॉक्टर कलाम इसरो में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के परियोजना निदेशक बने और जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। उन्होंने 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव के रूप में कार्य किया। बाद में वे भारत के राष्ट्रपति बने। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम शिलांग में आईआईएम शिलांग में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का निर्माण विषय पर व्याख्यान देने गए थे। व्याख्यान शुरू होने के लगभग 5 मिनट बाद ही वे गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु की पुष्टि की। एक महान वैज्ञानिक और विचारक अलविदा कह गए इस दुनिया से।

श्रोताओं, बारिश के पानी का संरक्षण यानी वर्षा जल संग्रहण, इस बात की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। बारिश के मौसम में तो हमें सभी जगह जल दिखाई देते हैं, लेकिन गर्मियां आते ही पानी के हर एक बूंद की कीमत समझ आती है। जल स्रोतों के सूखने से आम जनजीवन प्रभावित होता है। अब सवाल यह है कि बारिश के दिनों में जल संरक्षित कैसे रखा जाए। श्रोताओं, सतह से बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही प्रभावशाली और पारंपरिक तकनीक है, जो सरल भी है। इस उपाय से छोटे तालाब, भूमिगत टैंक, बांध आदि का उपयोग करके जल संरक्षण किया जा सकता है। एक है छत पर वर्षा जल संचयन, इसमें एक छोटी नहर बनाई जाती है जो छत पर जमा वर्षा जल को एक भंडारण टैंक से जोड़ती है। इस संग्रहित वर्षा जल को स्वच्छ रखने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। छत के संग्रहण क्षेत्र में जमा वर्षा जल को या तो कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली में या किसी टैंक में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा है बारिश की तश्तरी बनाना। यह एक खुला वर्षा जल संग्रहण ढांचा होता है जिसका ऊपरी भाग उल्टे छाते जैसा दिखता है और इसमें एक फनल लगा होता है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करके नीचे जुड़े हुए बैरल में जमा करता है। एक और सरल तरीका है वर्षा उद्यान बनाकर। यह बगीचे में बनाया गया छोटा धसा हुआ भूभाग होता है जिसमें स्थानीय मिट्टी और कुछ देशी पौधे भी लगाए जाते हैं ताकि बारिश के पानी में मौजूद अशुद्धियों को दूर किया जा सके। यह वर्षा जल भूमि के अंदर रिसकर भूजल के रूप में जमा होता है। बोरवेल और कुओं को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करना भी जल संरक्षण का हिस्सा है, जिसमें बोरवेल और कुओं के आसपास 6 मीटर गहरे और 1 मीटर व्यास वाले गड्ढों को छिद्रित कंक्रीट के छल्लों से ढका जाता है जिससे पानी

कर भूजल स्तर तक पहुंचता है। शहरी क्षेत्रों में ग्रीन रूप सिस्टम और जल टैंक द्वारा भी बारिश के पानी को संग्रहित किया जा सकता है।

1789 में अमेरिका में विदेश मामलों में विभाग की स्थापना हुई थी, जो पहली संघीय एजेंसी थी। ये आज ही के दिन हुआ था। 1921 में आज ही के दिन टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इंसुलिन की खोज की थी। 1939 में भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की नींव क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पड़ी थी। 1953 में कोरियाई युद्ध समाप्त हुआ था आज ही के दिन। 1994 में भारतीय संसद ने जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता कर लगाने वाले परीक्षणों पर रोक का कानून पारित किया था। 2006 में आज ही के दिन रूसी प्रक्षेपण यान नेपर जमीन पर गिरा था। 2007 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने लगभग 40,000 साल पहले पाए जाने वाले विशालकाय जीव बोमबॉट के जबड़े का जीवाश्म मिलने का दावा किया था।

अब आइए जानते हैं उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ था, यानी 27 जुलाई को। 1913 में कल्पना दत्त का जन्म हुआ था। ये आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। 1940 में भारती मुखर्जी का जन्म हुआ था। ये भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका थी जिन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते थे। 1963 में KS चित्रा का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं। 1967 में आसिफ बासरा का जन्म हुआ। ये भारतीय सिने अभिनेता और टीवी कलाकार थे। 1983 में सीमा पुनिया का जन्म हुआ। ये भारतीय महिला चक्का फेंक एथलीट हैं।

जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों का आज के दिन निधन हुआ वे हैं 1891 में राजेंद्र लाल मित्रा का निधन हुआ था, 1933 में कल्याण सिंह कालवी का निधन हुआ था, 1944 में पीताम्बर दत्त बड़तवाल का निधन हुआ था, 1970 में पत्तम थानु पिल्लई का निधन हुआ था, 1987 में सालिम अली का निधन हुआ था। ये भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। 1992 में अमजद खान का निधन हुआ था, ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। 1999 में आई के कुमारन का निधन हुआ था। 2002 में कृष्णकांत का निधन हुआ था। 2006 में शिवदीन राम जोशी का निधन हुआ था। 2015 में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। 2016 में लच्छू महाराज का निधन हुआ था और 2017 में एन धर्म सिंह का निधन हुआ था।

श्रोताओं, हेपेटाइटिस यानी लीवर की सूजन या एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए। इससे बचाव के लिए कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सुरक्षित भोजन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इससे बचा जा सकता है। हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, ठीक से पका हुआ भोजन खाना चाहिए, अपने निजी सामान जैसे टूथब्रश या रेजर किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बाहर का खुला हुआ खाना या गंदा पानी पीने से बचना चाहिए, हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया

गया है हेपेटाइटिस ए बी सी डी एवं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और बी को रोकने से डी की भी रोकथाम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए टीका लगवाना जरूरी होता है। हेपेटाइटिस सी और ई के लिए वर्तमान में कोई टीका नहीं है। इनकी रोकथाम के लिए जीवन शैली में बदलाव और स्वच्छता उपायों को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। हेपेटाइटिस ए और बी के टीके को शिशु के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल भी किया गया है, साथ ही यात्रियों, स्वास्थ्य कर्मियों और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित किया गया है। सुरक्षित चिकित्सा और व्यक्तिगत आदतों को जीवन शैली में शामिल करें। हेपेटाइटिस की रोकथाम इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पीड़ित कई लोगों में तब तक लक्षण नहीं दिखते जब तक कि उनका लीवर क्षतिग्रस्त नहीं हो जाता है। संक्रमण को पहले ही रोक देना बाद में क्रोनिक लीवर रोग का इलाज करने से कहीं अधिक सुरक्षित और सस्ता होता है। इसकी रोकथाम से न सिर्फ व्यक्तियों की सुरक्षा होती है बल्कि सामुदायिक प्रसार भी सीमित होता है और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ भी कम होता है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के बाद कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। होंगी कुछ और बातें, फिलहाल चलते हैं खूबसूरत गीत की ओर।

श्रोताओं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार आज भी बादल छाए रहने का अनुमान है और साथ ही बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। झारखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है, साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। तापमान की बात करें तो हजारीबाग में आज तापमान होगा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान होगा 24 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय का समय था आज सुबह 5:15 और आज सूर्यास्त का समय होगा संध्या 6:35।

श्रोताओं, स्थानीय खबरों में आज क्या है, आइए जानते हैं। आज से यानी 27 से 29 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग स्टेडियम में प्रमंडल स्तरीय हजारीबाग खेल महोत्सव आरंभ हो रहा है। भगवद गीता पाठ का किया जाएगा आयोजन। स्थान है हजारीबाग जेल सेंटर। समय है संध्या 6:30 से।

कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन झारखंड की ओर से रविवार को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, समाज सेवियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। संत कोलंबा कॉलेज के 122 झारखंड बटालियन एनसीसी की ओर से कारगिल विजय दिवस पर देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी कमांडर कैप्टन एसके पांडे के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम में 75 एनसीसी कैडेटर्स ने भाग लिया।

हजारीबाग जेसुइट एजुकेशन सोसाइटी की ओर से रविवार को सेंट जेवियर स्कूल के ऑडिटोरियम में मैजिस अवार्ड सेरेमनी 2026 का आयोजन किया गया। समारोह में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास ही सफलता की वास्तविक कुंजी है।

श्रावणी मेला के मद्देनजर हजारीबाग टाउन से विशेष ट्रेन सेवा की शुरुआत सोमवार से की जा रही है। इससे कांवड़ियों और अन्य यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन संख्या 08646 और 08645 रांची बरकाकाना हजारीबाग टाउन कोडरमा तिलैया के रास्ते सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक संचालित होगी। निर्धारित समय के अनुसार यह ट्रेन शाम 5:30 रांची स्टेशन से प्रस्थान करेगी। यह रात 8:20 पर हजारीबाग टाउन स्टेशन पहुंचेगी। यहां 2 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर के लिए रवाना हो जाएगी। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। यह सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनारक्षित कोच के साथ साथ स्लीपर और थर्ड एसी के डिब्बों की भी व्यवस्था की गई है।

भामाशाह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सांस्कृतिक बोध परियोजना के तहत प्रश्न मंच प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा से जुड़े रहने का संदेश दिया गया। विश्व मैक्रो दिवस के अवसर पर शनिवार को चुरचू और तारू प्रखंड की सीमा पर स्थित ग्राम पुर्णी नानो में पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृहद पौधरोपण अभियान चलाया गया। 15 एकड़ में लगे फलदार पौधे देखभाल का लिया गया संकल्प।

श्रोताओं, प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का निधन आज ही के दिन हुआ था। दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आज वो दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। फिल्म शोले का गब्बर सिंह तो आपको याद ही होगा। यूं तो कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप सुनवा रहे हैं एक गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:59 हुए हैं। विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए आइए आपको ले चले हमारे मुंबई केंद्र। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नवाब आरजू की रचना आप सुन रहे थे, ललित का संगीता, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो को आपने सुना, फिल्म एल्बम रात का ये गीत हमने आपको सुनवाया। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तर...

0: कल्याण जी आनंद जी का सर्वाध्यक्षीय ये भजन आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी की रचना थी। अलका याग्निक और साधना सरगम के स्वरों में नास्तिक फिल्म से ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: राजेश्वरी जी सचदेव को आप सुन रहे थे एल्बम थी हुल्ले हुल्ला रे, नक्श लालपुरी के बोल थे अमर हल्दीपुर की तरह थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से
3: सदा।

0: का मोहन इस फिल्म का दो गाना आप सुन रहे थे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। इंदिवर की रचना थी, अरुण पौडवाल की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

ये गीत आप सुन रहे थे, टाइटल सॉन्ग था आप आए बाहर आई फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: लाया। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: पेंटर बाबू फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार के बोल थे उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं लम्हे फिल्म का गीत आपने सुना शिवारी की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आवाजें थी लता मंगेशकर और इला अरुण की और साथियों की भी आवाजें थी।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल,
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

0: बप्पी लाहिड़ी का संगीत था अनजान के बोल, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। नमक हलाल फिल्म का गीत आपने सुना।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फर्ज फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोता मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: कल्याण जाना जी की तर्ज थी इंदीवर के बोल, मुकेश की आवाज, फिल्म सफर का ये गीत आपने सुना। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए श्रोताओं आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और भेज सकते हैं आप इस पते पर अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ चुके हैं श्रोताओं, तो अपने रेडियो श्रोताओं के लिए और सभी श्रोताओं के लिए एक बार आज की इबारत पढ़ देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो कार्यक्रम है हमारा वो इबारत पर ही बेस्ड है। तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे शब्द भी भेजे हैं और गीतों को कुछ चुनकर भी भेजा है। तो ये है आज की इबारत, वो बूंद फूल सी आसमान से चली जो कमर से कभी तो कभी सितारों से पूछा कि जमीन से मिलन कैसा होगा, मोहब्बत की कसम खाई है जो सीप से वो मोती सा बदन कैसा होगा, चेहरा शीशे का आंचल पानी का दिले बेताब ये जिंदगी का सफर कैसा होगा, कभी जमीन को देखूं तो कभी चांद को मौसम हिमाकत कहे जो मेरे इम्कान को, बदरा छूटा सफर की रात हुई दलदल पत्थर निर्जन बसेरों पर गिरकर बर्बाद होने की चिंता बेकार थी, कुछ यूं ठहरी मैं सीप में कि बूंद से मोती बन तैयार थी। तो आप सभी ने बहुत सारे शब्द भी भेजे हैं श्रोताओं, गीतों को भी चुनकर भेजा है और आपकी रेडियो सेट पर बिल्कुल शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: इस गीत के कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओ और गीतकार बताने हैं। एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि आज के इस खूबसूरत और काव्यात्मक गद्यांश का मुख्य विषय है जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरकर आत्मखोज, धैर्य और रूपांतरण का सफर। ये पैराग्राफ एक संकारात्मक सकारात्मक संदेश देता है। ये बताता है कि जीवन का सफर भले ही अनिश्चितताओं, डर और मुश्किलों से भरा हो, लेकिन अगर आपके भीतर धैर्य है तो आप हर चुनौती को पार करके अपने जीवन को सार्थक बूंद से मोती बना सकते हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को भी चुना है। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि आज की इबारत बारिश की बूंदों की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती हैं। बारिश की बूंद की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती हैं। उसी तरह आसमान से गिरती भी बूंदें अपने भविष्य को लेकर उत्सुक भी हैं और अनजान भी। अनेकों गिरती बूंदों को अपनी मंजिल का पता नहीं होता। रास्ते में बादल बिछड़ते हैं, पत्थर मिलते हैं, अंधेरी रातें आती हैं और कई बार लगता है कि सफर यहीं थम जाएगा, लेकिन हर बूंद का नसीब नसीब मिट्टी में खो जाना नहीं होता। कुछ बूंदें सीप की गोद में ठहरती हैं और समय उन्हें मोती बना देता है। इसलिए सफर की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार मंजिल हमारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंद जो बन गई मोती, बादलों के आशियां से बिछड़ बूंदों का जमीन तक का सफर की दास्तां बयां करती इबारत अपनी खुशकिस्मती बदकिस्मती की सूरत हाल पर चिंत सफर का अंत तह मंजिल सीप में आश्रित हो संतुष्टि सह सुखांत हुई। बूंद का ये सफर नामा होना चाहिए। इंसानी दिनचर्या को संदेश दे जाती है। विघ्न बाधा सामयिक होते हैं, मनोबल से मंजिल देर सवेर जरूर मिलती है। तो आप बता सकते हैं कि आपकी मंजिल क्या थी और क्या आपको मंजिल पाने में कोई कठिनाई सामने आई। वैसे मंजिलों की राह कठिनाइयां तो बहुत सारी आती हैं। बूंद पर अगर कोई कविता आपने पढ़ी है या आपने
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक लाएगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बनेगा झारखंड। बदलाव से तेज होगी रिफंड प्रक्रिया। भाजपा ने उत्पाद सिपाही परीक्षा पर सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष ने की मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। माओवादी विरोधी अभियान को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर समेत 16 माओवादी मुख्यधारा में लौटेंगे, कल करेंगे सरेंडर। पलामू में डीईओ कार्यालय के लिपिक निलंबित। शिशु देखभाल अवकाश संचिका आगे न बढ़ाने पर विभागीय कार्रवाई। और ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार जीता राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही झारखंड महाराष्ट्र के बाद जीएसटी कानून में संशोधन लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। प्रस्तावित संशोधन से कारोबारियों के लिए कर प्रणाली अधिक सरल होगी।

0: रिफंड प्रक्रिया में तेजी आएगी, छोटे निर्यातकों को राहत मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार से उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा आचरण अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए राज्य में आवाज उठाएं।
1: उत्पाद सिपाही की प्रक्रिया में 19 लोगों की जान गई दौड़, उनको भी 1 करोड़ रुपए झारखंड राज्य की सरकार और कांग्रेस सड़कों पर उतर करके न्याय की मांग, छात्रों के हक के लिए पेपर लीक हुए परीक्षा से पूर्व, तो धांधली हुए हैं, अवैध रूप से लोगों ने पैसे का लेन देन किया है। झारखंड के जुआ जाना चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर मौन क्यों है, युवाओं का भविष्य खराब किया है, अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है, कांग्रेस को अपनी स्थिति का स्पष्ट रूप से विचार।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्रों के शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने इसे प्रारूप मतदाता सूची के समयबद्ध प्रकाशन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इससे पहले पोड़ाहाट अनुमंडल ने यह कार्य पूरा कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया था। अब 29 जुलाई तक प्रपत्रों के सत्यापन के बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में कुल 60 लाख रुपए के इनामी 16 कुख्यात माओवादी कल आत्मसमर्पण करेंगे। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी और 10-10 लाख रुपए के इनामी 3 जोनल कमांडर भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लगातार चल रहे माओवादी विरोधी अभियान और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में उग्रवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं। सावन माह को लेकर खूंटी के आमरेश्वर धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि भीड़ को देखते हुए प्रत्येक रविवार और सोमवार को अतिरिक्त पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
2: पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था के बारे में तो उस जगह को भी हम लोगों ने चयनित किया है, लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। पब्लिक से अपील ये रहेगा हम लोगों का कि जो पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, सब लोग अपना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर उसको वहीं पे खड़ा करें। ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों का होता है, उसको हम लोग कर्रा के रस्ते होकर को डाइवर्ट करेंगे। 28 अगस्त को मेन मेला लगेगा, उस दिन हम लोग ट्रैफिक वहां से मूवमेंट है उसको कम्प्लीटली रोक करके रखेंगे।
0: पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित तथा प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिक ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के आदेश पर यह कार्रवाई सहायक शिक्षिका के शिशु देखभाल अवकाश से संबंधित संचिका समय पर प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लातेहार स्थित क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। हजारीबाग में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देना और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। जिला युवा अधिकारी रुद्र शेखर ने युवाओं से नशा मुक्त जीवन अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

0: मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये हजारीबाग में हम लोग नशा मुक्त युवा को विकसित भारत ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता है यहाँ पे और इसके बाद राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय भी होने वाला है। विभिन्न कॉलेजेस है, यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस है और अलग अलग इंस्टीट्यूट है, आपको सिंगिंग के डांसिंग के अकेडमी है, वो सभी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे
1: रांची में 2400 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 6 नए जीआईएस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव ट्रांसमिशन निगम को भेजा है। जेबीवीएनएल रांची के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कुसई बूटी सरवल दसमाइल इटकी और नावा सोसो में ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। इससे लाइन लॉस वोल्टेज ड्रॉप और खराब मौसम के दौरान होने वाली बिजली व्यवधान में कमी आएगी तथा रांची शहर में अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भू राजनीतिक तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज सुबह कारोबार के दौरान तेजी देखी गई। सेंसेक्स 675 अंक की बढ़त के साथ 76,734 पर और निफ्टी 192 अंक उछलकर 23,959 पर कारोबार कर रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी रियल्टी और मीडिया क्षेत्रों के शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी दर्ज की गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है।
2: तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। हमारे नेशनल एंथम जब गाते हैं, जब सुनते हैं तो अपना आप आंसू निकलते हैं। खुशी के ही आंसू है कि मैंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल दिया। इसी के लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी पूरे इंडिया भरवासी को।
1: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक लाएगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बनेगा झारखंड। बदलाव से तेज होगी रिफंड प्रक्रिया। भाजपा ने उत्पाद सिपाही परीक्षा पर सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष ने की मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। माओवादी विरोधी अभियान को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमांडर समेत 16 माओवादी मुख्यधारा में लौटेंगे। कल करेंगे सरेंडर। पलामू में डीईओ कार्यालय के लिपिक निलंबित। शिशु देखभाल अवकाश संचिका आगे न बढ़ाने पर विभागीय कार्रवाई। और ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार जीता राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: श्रोता लिखते हैं कि मैं एक शेर पेश करता हूं अपने श्रोताओं की नजर करता हूं। सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया आकाशवाणी मुंबई को घायल बना दिया। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सब यानी हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे अपने अपने शहरों में। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो से मुझे बहुत प्यार है, ये बचपन से ही रेडियो मैं सुनता हूँ। 30-35 मोबाइल को खराब कर दिया है, सुबह से चालू करते हैं तो रात के 12 के बाद ही बंद करते हैं। लव यू रेडियो, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब भाई 30-35 मोबाइल आपने खराब कर दिए हैं, क्या कह सकते हैं। रेडियो विविध भारती भी आप सभी के संग है। श्रोताओं, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमान की असीम गहराइयों से शुरू होकर धरती की प्यास गोद तक का बारिश की बूंदों का सफर प्रकृति का सबसे सुंदर और जीवंत काव्य है। गहरे कजरारे बादलों के झूलों में बूंदों का बचपन पलता है। जब बादलों का सब्र टूटता है तो ये नन्ही बूंदें अपनी अनंत यात्रा पर निकलती हैं। आसमान से नीचे आते हुए बूंदें हवा

के अदृश्य हाथों में हाथ डालकर थिरकती हैं। कभी कभी तो ये बूंदें आसमान में सूरज की किरण से सतरंगी इंद्रधनुष की खूबसूरत चुनर ओढ़ लेती हैं। वो पहाड़ों, नदियों, पौधों, सीप और सागर की जड़ों में समाकर एक नए जीवन को जन्म देती हैं। आसमान का ये अनमोल उपहार धरती को समृद्धि का वरदान देकर उसी में लीन हो जाता है। दो बातें इसमें है शोदाओ, आप उसका जवाब दे दें तो क्या ही अच्छी बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बारिशों में क्या इंद्रधनुष आपने देखा है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और है बात ये कि सीप में मोती बंद होता है, लेकिन मोती क्या आपको पसंद है और वो कौन सा पक्षी है जो बारिश की बूंदों के लिए तरसता है और बैठा रहता है कि कब बारिश होगी, कब पानी मिलेगा पीने को। कलाकार अगर आप पहचाने तो बता सकते हैं श्रोताओं।

खास पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे गबन फिल्म से। एक श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरती पानी की बूंदें पहाड़ों पेड़ पत्तियों से टकरा कर धरती में समा जाती हैं, प्रकृति का वातावरण खुशनुमा हो जाता है, सीप में गिरी बूंद चमकती मोती बन जाती है, हमें ये सिखाती है रास्ते में आए हर एक मुश्किलों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक हमारी और श्रोता लिखती है कि बारिश की बूंदें हमें एक अनमोल सीख देती हैं, वे जितनी ऊंचाई से आती हैं उतनी ही विनम्रता से धरती में समा जाती हैं, न कोई अहंकार न कोई शोर, बस चुपचाप हर सूखी जिंदगी में हरियाली और उम्मीद बो जाती।

मोती हम पहनते हैं श्रोताओ, वो ये बूंद ही तो हैं। क्या आपको ये मोती पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो क्यों पसंद आते हैं, ये हमें जरूर बताइए। अनमोल मोती फिल्म का गीत आपने सुना, और तालाब में कौन सा फूल है ये आपको बताना है। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम भोपाल में तो जरूर सुहाना है, लेकिन धूप निकली हुई है और उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो, बाकी समय बिताने के लिए विविध भारती ही है। जी हाँ, बारिश तो होनी ही चाहिए, होगी, थोड़ा इंतजार तो करना होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पपीहा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही संतुष्ट होता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में अयोध्या सिंह हरिऔध की कविता पढ़ी थी, एक बूंद। क्या आपने भी कोई कविता लिखी है श्रोताओं, या बूंद पर कोई पैसेज, कोई इबारत, कोई बात आपने लिखी है तो आप जरूर हमसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेन लिली और जीनिया के फूल नजर आते हैं। जी हाँ, ये वही फूल हैं जिन्हें हम गुलमेहंदी का फूल कहते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी रंग जो होते हैं, कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये किन किन कलर्स का होता है आप चाहें तो बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ज्वेल थे फिल्म का गीत था, देवानंद और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में हमें सबसे अच्छी वो बूंद जो सीप में जाकर मोती बन गई। बूंद को ये नहीं पता कि उसका सफर कहां खत्म होगा, फिर भी वो चलती रही, शायद इसीलिए वो मोती बन गई। जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है जो मंजिल से पहले उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। और एक और श्रोता ने लिखा है, इसमें बारिश, बूंद, फूल, आसमान, चांद, सितारे, जमीन, मोहब्बत, सीप, मोती, बदरा, आंचल, चेहरा, शीशा, सफर, जिंदगी, रात, पत्थर, दलदल, निर्जन, मिलन और इंतजार जैसे शब्द छुपे हुए हैं।

इस फिल्म का नाम आपको बताना है श्रोताओं, और कलाकार भी आप ही को बताने हैं। संगीतकार मैं बता देती हूँ, ओपी नैयर, और गीतकार SH बिहारी, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ओस की बूंदों को पत्तों पर छुओ तो पत्ता मखमल सा लगता है। जी हाँ, और बूंदे भी तो गायब हो जाती हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि अनमोल मोती फिल्म का लोकप्रिय गीत जितेंद्र और बबीता जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि सफर बूंद का अंजाम मत पूछें, सबके नसीब में सीप नहीं होते। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे पपीहे के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रातः बहुत बार पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इंद्रधनुष का दूसरा नाम भी है मेघ धनुष। स्वाति नक्षत्र 22 तारीख से बैठा है, इनका पानी अमृत समान होता है। थोड़ा संचय कर सकते हैं तो करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो शीशे की बोतल में भर कर रखिए, ऐसा ये कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मिनी मुमताज पर फिल्माया गया गीत था। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वाति के पानी को पपीहरा पक्षी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करता रहता है कि एक बूंद पानी उसके मुंह में चली जाए। एक और श्रोता लिखते हैं कि पपीहा पानी की बूंदों के लिए तरसता है, जो स्वाति नक्षत्र में बरसती बूंदों के लिए चोंच खोले इंतजार करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोती दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कल्चर्ड, जो कि मोती की खेती करने पर मिलता है। चातक पक्षी होता है जो एक पावस की बूंद पानी का इंतजार करता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, चातक पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि ये केवल वर्षा का जल विशेषकर स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही पीता है, ये माना जाता है। और इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जी हाँ, सतरंगी तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से कलर होते हैं ये आपको बताना है। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। और चातक के बारे में कहा जाता है कि वो बारिश की प्रतीक्षा करता है, मोती किसे नहीं प्रिय है, ऐसा ये लिखते हैं। जी हाँ, मोती बहुत सुंदर। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मोती आपको प्रिय तो लगता है, लेकिन इसका कोई रंग तो नहीं होता। तो वैसे कहा जाता है कि काले और सफेद रंग के मोती होते हैं, तो मोती आपको क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सात रंग होते हैं, बारिश में हल्की सी झलक आप इंद्रधनुष की देख सकते हैं, और इन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वो बूंद का ही भाग्य है जो सीप में गिरकर मोती बन जाया करती है।

पुर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म पालकी में, और शकील बदायूं ने लिखा ये गीत था। राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद सितारे गगन के साथ, चांद सितारे बिजली का लेकर हाथों में हाथ, बदली की आगोश से छूटकर पानी की बूंदे जब है गिरती, एक सा चेहरा पर तरह तरह के काम करती, सूखी प्यासी धरती पर नवगीत जागती, मिट्टी की सौंधी खुशबू बनकर फसलों की हरियाली लाती, कमल के कोमल पत्र पर बनकर मोती, कभी खोलते तवे पर भाप बन जाती, स्वाति नक्षत्र की घड़ी में सागर की सीप में आती, बनकर अनमोल मोती, एक ही जल के रूप अनेक, जैसे संगत वैसा काम, बदली की ये नन्ही बूंदे दे देती हैं जीवन का सच्चा पैगाम। और कुछ गीत भी इन्होंने पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सृजन, समर्पण और पुनर्जन्म का शाश्वत उत्सव है। आसमान की असीम गहराइयों से आंचल फैलाए जब नन्ही वर्षा की बूंदे चली तो वो महज पानी का कतरा नहीं बल्कि ख्वाबों का एक समंदर थी। हवा की झोंकों से बातें करती, कभी चांद की चांदनी को सहलाती तो कभी सूरज की किरणों से सतरंगी ख्वाहिशें बुनती। और भी इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोता और बताइए किस फिल्म का है।

मधुमति का ये गीत आप सुन रहे थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और धरती का मिलन एक पवित्र प्रेम जैसा है और सीप में पलने वाले मोती का बदन उसके सच्चे प्यार की अनमोल निशानी है। बारिश की बूंदें जब प्यासी धरती पर गिरती हैं तो दोनों एक हो जाते हैं और ये अनमोल और अनोखा मिलन आसमान और जमीन के प्यार को दिखाता है। बारिश की बूंदें और सीप का रिश्ता गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीप उसे अपने दिल में बसा लेती है। सीप अपने दिल का दर्द सहकर भी वो बूंद एक चमकता हुआ सफेद और कठोर मोती बन जाती है, इसलिए बूंदें और सीप का मिलना सच्ची मोहब्बत, समर्पण और अनमोल प्रेम की एक सुंदर निशानी मानी जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बूंद जो बन गई मोती फूल आहिस्ता फेंको, और तमाम गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अच्छी वो बूंद है जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को नहीं पता था कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर वो चलती रही, शायद इसलिए वो मोती बन गई। एक और श्रोता ने लिखा है, प्यास लिए मनवा हमारा जो तरसे एक बूंद तेरी दया की, जो बरसे आसमान से आया फरिश्ता, धीरे धीरे से चलो मेरी बाकी हिरणिया, और तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर बने रहने की चाहत को त्याग बूंद धरती का रुख करती है, जो किसी भी देवदूत से कमतर नहीं होती, उन्हें भी ये ज्ञान भली भांति रहता है कि एक बार ऊंचाई से नीचे आते हैं उनका मौलिक अस्तित्व बदल जाएगा। कोई बूंद कहीं किसी छातक की प्यास बुझाएगी, किसी बूंद को सीप अपने में संजोकर अनमोल मोती के रूप में उस बूंद का कायाकल्प कर देगी। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, खेत है, वन है, उपवन, नदी, सागर, झरने, पोखर। क्या आपने बूंदों को ध्यान से देखा है श्रोताओं? तो ये बूंदें जो हैं, कई बार जब हम घूमने जाते हैं सफर पर, तो जो शीशे होते हैं गाड़ी के या ट्रेन के जो शीशे होते हैं, तो इनमें जब ये झरती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं और क्या ऐसा सफर आपने किया है बारिशों का, या अब भी आप सफर पर हैं? ये कौन हैं कलाकार श्रोताओं जो सफर पर निकले हैं?

विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। सगाई फिल्म से राजेंद्र कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अभी नेपाल के बॉर्डर पर हूँ, यहाँ तो बारिश जमकर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है। तो ये बताइए श्रोताओं, क्या आपको बारिशों का मौसम अच्छा लगता है क्या? एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, शायद मुस्कुरा दो। जी हाँ, उस गीत के बारे में ये कह रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का जो था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में तनुजा और देव मुखर्जी नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि FM पर सुन रहे हैं, लोगों के उत्तर हमें मोबाइल ऐप से जो है वो मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और अब इन कलाकार को आप पहचानिए।

एक हमारी श्रोता लिखती है कि मैंने देखी है ओस की बूंदें छत पर, जब मैं पत्तों पर बूंद रहती थी उसे हाथ से छूने पर सरक कर नीचे गिर जाती, बहुत अच्छा लगता और इसे देखने के लिए बचपन में जल्दी सोकर उठ जाती थी।

आखिरी खत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राजेश खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स के लिए, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, रहिए विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। हम यही सोचते हैं कि पिता बड़े कठोर होते हैं, माता बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। सच मानिए तो पिता का हृदय बहुत कोमल होता है। ऊपर से वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों की, परिवार की बड़ी चिंता होती है। वे अपने आंसू पी लेते हैं, दर्द छुपा लेते हैं, क्योंकि ये उनका अपना परिवार बनाया हुआ होता है। वे परिवार के वो स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है। वे अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम, कर्तव्यों में अधिक दिखाई देता है। पिता अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, जिससे सब खुशी से रहें और होठों पर मुस्कुराहट बिखरती रहे।

दोस्तों, पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। उनकी सुरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन के मूल्यों का आधार बनते हैं। सही गलत का अंतर जीवन की हर समस्या का हल करने वाले होते हैं। उनकी छांव में बच्चे अपने को सुरक्षित पाते हैं। पिता का साथ हिम्मत हौसला देता है। उनके ना रहने पर उनकी कमी का एहसास दिल को झकझोर देता है। पिता विशाल वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी बाहों में शांति, सुकून और स्नेह का आभास होता है। कभी अपने पिता के पास दो घड़ी बैठकर उनके उस प्यार को महसूस कीजिए, जिसे कभी उन्होंने आप पर लुटाया था। अपना बचपन अपने बेटी बेटी में जिया था। उनके कंधों पर बैठकर बाजार घूमा, मेला देखा। हर मौसम में वे ढाल बन जाया करते थे।

पिता और संतान का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का भी होता है। पिता का प्रेम अक्सर शांत नदी की जलधारा की तरह होता है, जो बिना शोर किए अपने बच्चों के जीवन को सींचता रहता है। पिता अपने पुत्र संग दोस्त की तरह रिश्ता रखता है। पिता अपने बेटे में अपने सपनों, संघर्षों और अनुभवों की झलक देखते हैं। बेटी के साथ पिता का रिश्ता बेहद कोमल, स्नेहमय और भावनाओं से भरा होता है। बेटी के लिए पिता उसका पहला नायक, पहला रक्षक और आदर्श होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता की नजरों में वो नन्ही सी परी ही रहती है। पिता का प्रेम दोनों के लिए समान होता है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
6: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने

0: कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसालों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का उठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
1: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मुकेश को आपने सुना, शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: असली नकली फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

दुनिया। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली का गीत आपने सुना। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड सरकार विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही झारखंड महाराष्ट्र के बाद जीएसटी कानून में संशोधन लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों से कारोबारियों के लिए कर प्रणाली अधिक सरल होगी, रिफंड प्रक्रिया में तेजी आएगी, छोटे निर्यातकों को राहत मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार से उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा आचरण अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए राज्य में आवाज उठाएं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं को लेकर आज नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। भाजपा ने धरने का समर्थन करते हुए सफाई, पेयजल, सड़क और जल निकासी जैसी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। धरने के दौरान विधायक सरयू राय ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है।
1: संवेदनशील वार्ड पार्षद है, वे वार्ड पार्षद तो दुखी होंगे। तो हमारा धरना इसी के लिए है कि कोई काम नहीं हो रहा है और चुन चुन कर ऐसे अफसर यहाँ लाए जा रहे हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारे विरोधी हैं। इस त्रिकोण के खिलाफ धरना है। हम चाहते हैं कि मानगो में विधायक, सांसद, मेयर, वार्ड पार्षद सब मिलकर जनता के लिए काम करें।
0: रांची में 2400 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 6 नए जीआईएस ग्रीड बनाने का प्रस्ताव ट्रांसमिशन निगम को भेजा है। जेबीवीएनएल रांची के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कुसई, बूटी, सरवल, द स्माइल, इटकी और नावासोसो में ग्रीड स्थापित किए जाएंगे। इससे लाइन लॉस, वोल्टेज ड्रॉप और खराब मौसम के दौरान होने वाले बिजली व्यवधान में कमी आएगी तथा रांची शहर में अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में भारती पांडे से जुड़े अवकाश प्रकरण में प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया, जबकि दूसरे लिपिक का प्रतिनियोजन रंग का कर दिया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चिकित्सकों की ओर से 2 बार भर्ती होने की सलाह दिए जाने के बावजूद मरीज के इनकार के कारण स्थिति जटिल हुई और बाद में शिशु मृत पाया गया। पाकुड़ में राष्ट्रीय एसटीएससी हब के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सरकारी खरीद नीति, कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता की जानकारी देकर उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस मौके पर समेकित जनजाति विकास अभिकरण के निदेशक अरुण कुमार इक्का ने एसटीएससी उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता की जानकारी दी।
2: इस कार्यक्रम के तहत जितने भी एसटीएससी समुदाय के जो उद्यमी है, लघु उद्यमी है, उनको हम लोग सरकार का लाभ कैसे वो ले सकते हैं और अपने लघु उद्यमी बनने का जो सपना साकार करना चाहते हैं लोग, इसमें आगे बढ़ के आगे काम कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है।
0: सावन माह को लेकर खूंटी के आमरेश्वर धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि भीड़ को देखते हुए प्रत्येक रविवार और सोमवार को अतिरिक्त पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचा में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक के साथ भारत के लिए दोहरी जीत दर्ज की। 21 वर्षीय ईशा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 निशाने लगाए। पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ಹೇಳಿ.
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को प्यार भरा नमस्कार. और दीपा जी आपको भी नमस्कार.
2: सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सखाओं, श्रोता भाइयों और चंचल आपको भी हेल्दी नमस्कार.
1: आप आती हैं तो हेल्दी नमस्कार होता है भाई. हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं, हेल्दी नमस्कार करते हैं. और दोनों ही चीजें जीवन में बहुत जरूरी है.
2: जितना और स्वास्थ्य भी.
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य जरूरी है. और कुछ जैसे हम कहते हैं ना, जब मौसम की हम बात करते हैं तो भाई गर्मियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है. अगर ठंड बहुत पड़ रही है तो उसके हिसाब से. और अब क्योंकि बारिश का मौसम है
2: जी,
1: यहाँ बार बार थोड़ा ठंडा

0: कुछ गर्म हो जाता
1: है, गर्म हो जाता है। और बस एक हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर कोई एक एक सुनने वाला भी हमारा श्रोता है या हमारी बहन कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी सजग हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ कहीं कुछ पूर्ण हो गया, कुछ साकार हो गया। तो एक प्रेरणा क्योंकि उनसे मिलती रहती है, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें भी कुछ तो एक दूसरे को मिलके इंस्पायर करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा, और हम इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं। और हमने जब बात की मौसम की, और अब बारिश का मौसम है, तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, बारिश में खान पान का कैसे ध्यान रखना है, या भाई कपड़े कैसे पहनने हैं। तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में, खासतौर पर अपने आप को बचाने के लिए।
1: हाँ,
0: उन चीजों की हम बात करेंगे।
1: ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों में बिजली के तार कहीं खुले हैं, कटे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना, जिसकी हम विस्तृत से चर्चा
0: बिल्कुल
1: करेंगे।
0: और कई बार बहुत तेज बारिश है और आप घर से बाहर हैं, तो उस वक्त आप अपना बचाव कैसे करेंगे, और इन सब चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी हमारे साथ अपनी बातें, अपने अनुभव या क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें साझा कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और व्यंजन में हम चलेंगे पंजाब की ओर।
0: बिल्कुल, हम छोले भटूरे तो पहले हम चख चुके हैं, यानी कि रेसिपी उनकी आ चुकी है, लेकिन छोले भटूरे जैसे ही है छोले कुलचे, जिसमें छोले अलग होते हैं और भटूरे से बिल्कुल अलग होते हैं कुलचे, तो इसके भी रेसिपीज हमारी जो सखियां हैं जो कि किचन के काम में बड़ी माहिर हैं, वो किस तरह बनाती हैं, अपनी रेसिपी जरूर हमारे साथ साझा करें। और हमारे कुछ श्रोता भाई भी होंगे जो भी अक्सर किचन में जाकर खटर पटर करते हैं और बड़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
1: आपको बताएं चंचल कि कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं आ चुके हैं।
0: हाँ।
1: और हम साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है और किसे देश में पसंद नहीं होगा, सब जगह इस व्यंजन को बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है।
0: बिल्कुल, अभी बस बारिश खत्म होते ही जैसे गुनगुनी ठंड चालू होंगी तो मक्के दी रोटी सरसों दा साग इसकी बहार ही बहार होगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और भरोसा करिए, भरोसेमंद रहें।
0: हाँ।
1: इस बारे में ये जीवन का आधार है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो इस बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश भी पढ़े जाएंगे। और हम अपने श्रोताओं से फिर वही अनुरोध करते हैं कि आप के लिए कब भरोसा बहुत ज्यादा बना या कब कहीं टूटा।
0: हाँ।
1: इस बारे में जरूर बताइएगा।
0: बिल्कुल,
1: क्या ऐसा किस्सा हुआ जिसके लिए लेकर के दिल दुखा, या आप इस बात को यहाँ पर सबके सामने शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अपनी ये दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
0: बिल्कुल दीपा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े भरोसे से किसी व्यक्ति की विशेष की वजह से कोई काम करके बैठ जाते हैं कि भाई भरोसा है उन पर, टूटेगा नहीं
1: जी।
0: लेकिन वहां जब वो भरोसा पूरा नहीं होता तो हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारा दिल टूटता है, बहुत दुख पहुंचता है
1: जी।
0: लेकिन ये बात हम खुद पर भी लागू होती है कि हम जब किसी और से भरोसा चाहते हैं तो हमें भी उन दूसरों के लिए भरोसेमंद बनना है।
1: बिल्कुल। और आज सोमवार है तो हमारे सभी जो सखी सहेली परिवार के जो साथी हैं इंतजार करते हैं
0: कहानी का। हाँ। तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे?
1: आज हम सुनेंगे अशिक्षित का हृदय। इसकी पहली कड़ी आज हम सुनेंगे। ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी है, तो इसका वाचन हम इसके बारे में सब मिलकर के सुनेंगे कि कहानी।
0: ये तो हुई आज के पिटारे में हमारे क्या था इसकी बात, तो कहानी सुनेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेना बड़ा जरूरी है।
1: चलिए

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी।
2: कथा सुधा, इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय।
3: सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए हैं नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है, मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है।
4: 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे।
3: अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा, यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं।
4: मनोहर, तुम सच ही आ गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे?
3: अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा।
4: अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे?
3: अब एक सप्ताह में दे दूंगा।
4: अच्छा, स्वीकार है, एक सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे।
3: अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी बस इतनी प्रार्थना है आपसे।
4: खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ,
5: मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में 2-1 दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहां अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है, दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। एक वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है। इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला,
3: यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है, इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है।

0: हाँ काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है।
1: उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा,
2: चाचा किससे बात करते हो, यहां तो कोई है भी नहीं।
0: क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि परसाल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं। वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं।
2: चाचा जाने भी दो।
0: पर बेटा समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है, मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं। ये भी एक लड़ाई ही है, अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं।
2: चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है। पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है। पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
0: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है। दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
2: चाचा बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता।
0: बेटा ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया किसी ने उधार न दिया। क्या करूं बेटा तेजा। सच जानना जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।

0: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
1: चाचा, बापू से ये हाल कहाँ है?
2: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और 2-2, 3-3 दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
1: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है?
2: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
1: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
2: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
1: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
2: अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा।
3: की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
4: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
5: बिल्कुल।
4: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
5: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज है दीपा।
1: यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों से क्या यहाँ बैठे कि अगर जीवन में भरोसा ना होना, या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना हो,
0: हाँ,
1: तो ये अगला जो जो एक घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप सबके साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
0: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे, और वाकई बहुत अच्छे बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है। और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और सभी रिश्ते फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
0: हाँ।
1: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
0: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते

0: पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
1: ये तो बात सही
0: बल्कि
1: है।
0: कई बार तो किसी के साथ काफी समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता,
1: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीजें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है। कस में खाना, रस में निभाना, ये वो चीजें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे, और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया। ये बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि दो जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए?
1: हाँ।
0: ऐसा नहीं होता है ना?
1: बिल्कुल नहीं होता।
0: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हों।
1: बहुत सही बात कही
0: है ना, या फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा हो। इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या?
1: भरोसा, यानी विश्वास। हाँ, बहुत सही बात है।
0: और जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
1: दीपा, बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर ही भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दांव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा, माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं वो रिश्ते को तोड़ देते हैं। इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
1: बिल्कुल। कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जो हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह बन जाता है।
0: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
1: तो बिल्कुल, हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
0: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
1: हाँ।

0: भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है,
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है, यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो बाकी दुख पहुंचता है।
1: और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है।
0: और उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो हमें वो बहुत भरोसेमंद समय पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
0: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे की,
0: भरोसे की, और बहुत सारे संदेश आए हैं। आगे उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ इसी शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
1: बहुत कहते ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए, लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ, पर ये बात किसी को बताना मत, लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें, बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
1: इसी तरह से एक और संदेश है, इसने हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा, पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहां मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
0: तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या ही बात है।
1: और बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर ये भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने

0: वाले नुकसान है, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
1: बिल्कुल, एक संदेश, और बहुत सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बिजली में बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसी एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीजों को अलग छोड़ करके ये देखना बहुत जरूरी कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में, ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहते हैं ये सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है। ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें। यदि टूटे हुए तार आपके घर के नजदीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें, और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें, यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए, इसका ख्याल रखें। बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें।
0: और घर में जो अर्थिंग के तार होते हैं, कई बार देखते हैं हम तीन तार होते हैं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है, तो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में, और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: और हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है, तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियां, सरसों का साग एक गड्डी, पालक एक गड्डी, बथुआ एक गड्डी, मेथी एक गड्डी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। और अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3 और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काटकर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आंच पर। और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी की मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
0: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है, उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है और इसे थपथपाकर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो आप अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा आसान
1: हो जाता है। और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
0: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं, जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें कुलचे कहा जाता है जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते एक गाने की झलक सुन लेते हैं।

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार, नमस्कार।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड सरकार विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही झारखंड महाराष्ट्र के बाद जीएसटी कानून में संशोधन लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार से उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों को 1 करोड़ मुआवजे देने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा आचरण अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए राज्य में आवाज उठाएं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं को लेकर आज नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। भाजपा ने धरने का समर्थन करते हुए सफाई, पेयजल, सड़क और जल निकासी जैसी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर आज साहिबगंज रेलवे स्कूल और मालदा तथा साहिबगंज स्टेशनों के निरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में साहिबगंज पहुंचे। उन्होंने साहिबगंज रेलवे हाई स्कूल के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी के जायदा पुल के पास नहाने के दौरान लापता ट्रेलर चालक का शव आज एनडीआरएफ ने बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के दो रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंच गए, जबकि दिल्ली स्थित परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। रांची में 2400 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 6 नए जीआईएस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव ट्रांसमिशन निगम को भेजा है। जेबीवीएनएल रांची के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कुसई, बूटी, सरवल, दसमाइल, इटकी और नावासोसो में ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: वो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।
4: जी जी।
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
4: क्या बात,
3: शुक्रिया एक बार और।
4: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
3: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को

0: जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए. मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था.
1: ओके.
0: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली.
1: हाँ.
0: और मैंने बीएससी भी लिया था. और दो साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी.
1: ओके.
0: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे. दूसरी बात थी कोई ऑप्शन ही नहीं था. तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी. लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी.
1: बिल्कुल.
0: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए,
1: क्योंकि
0: एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता.
1: जी जी.
0: पहले साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको एक साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है. क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में, आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं. एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए.
1: जी जी.
0: खुद की प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूं अभी तक इसके अंदर.
1: ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं उनको, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट,
0: जो टिपिकल टर्म है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है.
1: जी.
0: ऑप्थेल यानी आय. तो आई सर्जन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है.
1: जी. इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
0: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 7-8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: जैसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम. दूसरी बात है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है. जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है. दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से. पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी. टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था. प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी. आजकल सोते भी कम है, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा. पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है.
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे. एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
0: जी,
1: हैं
0: जी.
1: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
0: ड्राइनेस रूप है, इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है. जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है. नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है. स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है. तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठे और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है, और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है. तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूं कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है.
1: जी.
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आंख, एक मिनट के लिए आंख बंद कीजिए.
1: कोई फॉर्मूला बताया?
0: 20-20-20 फॉर्मूला है
1: जी,
0: कौन फॉलो करता है भगवान जाने.

0: कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन एक जनरल है कि आप एक घंटे में एक टाइम तो एक 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना.
1: ऑफ कोर्स अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता है.
0: और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो LED है, पहले LCD थे.
1: जी,
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक LCD स्क्रीन थे, अभी LED स्क्रीन आए हैं. और LED स्क्रीन जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो ज्यादा चमकीली होती है,
0: ज्यादा चमकीली रहती है, तो उसका जो ब्राइटनेस रहता है, तो ग्लेयर जो आता है, उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है.
1: जी.

0: तो आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर दर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई

0: करके आते हैं सरदर्द के लिए,
1: अच्छा
0: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है। हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी,
1: जी
0: बच्चों
1: जी
0: में भी देते हैं जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
1: जी
0: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है, इरिटेशन आंख में, खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं। अब समझिए, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, अब शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन
1: सस्टेन करना मुश्किल
0: सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती
1: वो भी
0: है।
1: थक जाती हैं।
0: जी
1: क्या बात है। तो
0: जी
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना
0: जी
1: मुश्किल है, हमें ये
0: जी
1: मान लेना चाहिए
0: जी
1: कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं
0: नहीं
1: होगा,
0: होगा।
1: तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिर दर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है, वो आंखों में कोई प्रेशर होता है जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है।
0: नहीं, आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है।
1: जी जी
0: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
1: जी
0: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं। बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
1: जी जी
0: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है, वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है। जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजली 80-120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12-18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम BP मेजर करते हैं, वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है, जिसको ग्लोकोमा कहते हैं।
1: जी जी
0: ग्लोकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
1: अच्छा
0: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
1: जी
0: वो एक
1: जी
0: अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं, उनका शेप साइज, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह, उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में, ऐसे नहीं है, बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका BP भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए, आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उस बीमारी में, वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है
1: जी,
0: ग्लोकोमा जो है। मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूं आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है, अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए, आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ ही नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
1: ओ गॉड
0: तो
1: जी
0: क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है कि आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है,
0: सूख जाती है, और उसका कोई इलाज नहीं है।
1: ओह
0: अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई,
0: रोशनी गई।
1: एक उम्र के बाद
0: जी,
1: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं
0: जी,
1: ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
0: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराए
1: उसका फ्रीक्वेंसी।

0: कि क्या होनी चाहिए?
1: साल में एक टाइम
0: जी
1: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं। जैसे अगर आप, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये सेम चीज है,
0: कॉमन सेंस है, चालीस हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
1: हाँ, 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है।
0: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं,
1: संभावना 50% है माता के साइड से या पिता के साइड से।
0: जी जी,
1: सेम डायबिटीज में है, अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहां पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता।
0: जी,
1: हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहां से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहां से आ गया।
0: सही बात,
1: कहीं मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं से भी आ सकते हैं,
0: पूरे फैमिली ट्री।
1: बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती है हमको, विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीजें में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने 1 साल उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक दो घंटे निकालिए।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी
1: जांच
0: के बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर वगैरह, जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं। यहां एक दिलचस्प बात ये है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा
0: जी।
1: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया
0: जी।
1: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे जनरेशन में तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं।
0: जी जी,
1: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अब समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है
0: जी,
1: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए
0: जी।
1: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को
0: जी,
1: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
0: पेशेंट की, बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
1: एक बात मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछना हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है ये गलत है मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
0: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
1: एग्जैक्टली,
0: ये दे रहा है मैं लूं कि नहीं।
1: एग्जैक्टली, तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं
0: जी,
1: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
0: डॉक्टर नहीं है।
1: डॉक्टर नहीं है जी, ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ, वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है, मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आंख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है, चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है
0: जी।
1: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर

0: जो चश्मे का नंबर है वो परफेक्ट होने चाहिए।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, इस सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं। ये जो है ये मुसीबत की जड़ है, इससे बचना चाहिए।
0: नहीं, टू ईच देयर ओन, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफकोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता
0: जी,
1: और दूसरी तरह की भी जांच होती है, वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: वो बिठाया जाता है बहुत देर।
0: देखिए, ये एक साइंस है
1: जी,
0: जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप, और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना। ज्यादातर लोग आते थे, दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं। कोई भी हो, बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
1: नहीं।
0: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का या 50 साल पहले का कंसेप्ट है।
1: जी, जी जी,
0: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम, हम चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं
1: जी,
0: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूं घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
1: जिम्मेदारी
0: और काम रहते हैं उनका भी, तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: जरूर
1: उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ गाना सुनते हैं।
0: ओके, जरूर,
1: है ना,
0: थैंक यू।
1: आंखों में क्या जी फिल्म का नाम? 9-2-11
0: बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए के अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतन माला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी

0: पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की, बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।

0: एक जंगल में अंगुली माल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
1: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
2: मुझे छोड़ दो, हाथ वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़
3: मेरी अंगूठी ले लो।
0: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुली माल के बारे में सब कुछ बताया।
4: नाथ,
5: महात्मा,
4: प्रभु,
5: महात्मा,
4: प्रभु,
6: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
5: वहाँ अंगुली माल है।
6: हाँ प्रभु।
5: वो बहुत बड़ा डाकू है।
7: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं। हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
6: ना जाए प्रभु।
8: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहाँ?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: तुमको जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी।

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जगदीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य

0: बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार

0: शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
0: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
0: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी,
2: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
3: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
3: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
3: फादर कामिल बुलके ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
4: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
3: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
3: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र दो पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
3: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
5: तो अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार से उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा आचरण अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए राज्य में आवाज उठाएं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं को लेकर आज नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। भाजपा ने धरने का समर्थन करते हुए सफाई, पेयजल, सड़क और जल निकासी जैसी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर आज साहिबगंज रेलवे स्कूल और मालदा तथा साहिबगंज स्टेशनों के निरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में साहिबगंज पहुंचे। उन्होंने साहिबगंज रेलवे हाई स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। रामगढ़ सदर अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नवजात बच्चियों की माताओं को सम्मानित कर किट वितरित की गई। अधिकारियों ने बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा और रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सीएसआर समिति की बैठक हुई। इसमें हिंडाल्को की सीएसआर योजनाओं की समीक्षा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कौशल विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मन्नू भाकर ने कांस्य पदक के साथ भारत के लिए दोहरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

तो अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार को फिल्म परदेसी में। तो आइए आगे सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अवतार फिल्म का ये नगमा।

0: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम खेती बाड़ी।
1: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
2: मैं डॉक्टर रामकुमार आनंद गिरिडीह झारखंड से हूं। आज मैं एलर्जी के विषय में बताना चाह रहा हूं। एलर्जी खास करके इस मौसम में कुछ मौसम में भी होता है और कुछ वैसे भी खान पान के चलते होता है। इससे बचने के लिए खास करके कुछ प्रिकॉशन है जिसे लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन में जैसे अगल बगल का एनवायरनमेंट, खाने पीने, दूसरी बात है एलर्जी आसपास लोगों को है तो मास्क वगैरह यूज करें, और इससे भी ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर से परामर्श लें, उनका जो परामर्श निकलता है उसके अनुसार दवा जांच करवाएं और इस तरह एलर्जी से बचा जा सकता है।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के मीनाक्षी बहन के धने से जोहार राम राम। और बतावा तो इन सभी के हाल चाल कैसन हो। हमारा तो उम्मीद है कि तो इन सभी के हाल चाल वैसे होते का सही कहला ना। और हम इन बड़ी दिन में बातें भी मिलने लगल ही है तो बतावा हम इन जब भी आवो ही है देखा कि ढेरे मनी बातचीत करो ही है और साथे साथे कहीं को जानकारी भी सुनाओ ही है। और हम इन अपन कार्यक्रम में आगू बढ़िए ओकर पहले सुनो ही कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बचे के चाही। काहे कि उस समय देखा कि भारी बारिश के समय देखा गरज मलक हो है, जे कभी कभी जानलेवा भी होबो है। काहे कि बिजली देखा कि जे ऊंचा जगह पे और खुला मैदान में जल्दी गिरो है। एकर अलावे खेत में देखा कि पानी भरे से चूहा और कई प्रकार के जे बिल में रहे वाला जीव जंतु हो, जैसे सांप हो गलो, जहरीला कीड़ा हो है, वो बाहर निकल आओ हथिन और सुरापन सुरक्षित जगह या देखा कि खेत में आ जा हथिन। एह लेल देखा कि बारिश के समय खेत में जाए से बचे के चाही। एकर अलावे देखा कि गीला और चिकन माटी जे हो है ओकर में पैर फिसले के भी संभावना बनल रहो है, जेकर से गंभीर चोट लग सको है। तो और साथ में देखा कि और गंदा पानी और कीचड़ में रहे से भी देखा कि पैर में देखा कि फंगल इन्फेक्शन हो के खतरा बनल रहो है, पानी से फैले वाला बीमारी हुए के खतरा बनल रहो है। तो एकर से बच्चे के कोशिश करे के चाही। और एकर अलावे देखा कि गीला जमीन पर चले से माटी दब जाए है, जेकर से पौधा के जड़ के हवा न मिलो है। तो देखा कि ओकर से पौधा के हवा न मिलतो तो देखा कि वो भी पौधा मर जाए है। तो इसलिए देखा कि कोशिश करे के चाही कि जादे जाए के न चाही, पानी में डूबे से नाजुक पौधा भी टूट जाए है। और साथ में देखा कि मानसून के बारिश किसान सबन के परिवार खातिर तो देखा कि वरदान हो है, कम न हो है, वरदान हो है, मगर देखा कि ये बारिश जरूरत से ज्यादा होते तो देखा कि एकड़ में खड़ा फसल खातिर भी खतरा बन जाए है। कई बार ऐसन भी हो है कि सही जानकारी न हुए से किसान सब इनके देखा बारिश के दौरान कुछ ऐसन काम कर दे हथिन जेकर से उनकर ज्यादा आर्थिक नुकसान उठावे पड़ो है। और जब हम इनकर किसान भाई सब इन खेती बाड़ी करो हथिन तो उनका ये जाने के बड़ी जरूरी है कि मौसम खराब होवे पर खेत में का काम करे के चाहिए और का न। सबसे पहले तो देखा कि भारी बारिश के समय में देखा कि या देखा कि ओकर ठीक पहले खेत में कोई भी तरह के देखा दवा न छिड़के के चाही, कीटनाशक या उर्वरक के छिड़काव न करे के चाही। ये कहे कि देखा कि हो है ना कि बारिश के तेज बारिश के पानी में देखा कि वो तुरंत धुल जाए है, बह जाए है, तो उससे उनका पूरा लागत बेकार हो जाते हैं। और देखा कि लगातार बारिश के बीच में देखा कि खेत में देखा पानी अगर भरल होवे पर ट्रैक्टर से जुताई भी नहीं करे के चाही, देखकर से माटी के जो संरचना हुआ है वो बिगड़ जाए है। ज्यादा गीला माटी में देखा ट्रैक्टर चलावे से माटी दब के कठोर हो जाए है, जेकर से जे पौधा सभे के जे जड़ है ओकर विकास रुक जाए है। एकर अलावे देखा कि एकर में जब बारिश ज्यादा हुए तो नवा बीज के बुआई करे से भी बचे के चाही। काहे कि वो बीज देखा कि पानी के साथ बह सको है और ज्यादा नमी के कारण खेत में ही सड़ भी सको है। तो ये सब एहतियात अगर हम इनके किसान भाई सब इन बरतते तो देखा कि उनका फायदा भी होता है और नुकसान हुए से बच सको है। और देखा कि और कोशिश करे के चाहिए कि खेत के माटी जब भुरभुरा हो और हल्का हो जाए तब देखा कि वो समय में बुआई कर दिए के चाहिए। कई बार किसान पहले से तय रूटीन और देखा कि बिजली आवे के हिसाब किताब जे रहो है ओकर अनुसार ही ट्यूबवेल चला दे हथिन। और जब मौसम विभाग द्वारा बारिश के संभावना जब बतवल जा गेले है तो देखा कि सिंचाई के काम रोक देवे के चाही। खेत में ज्यादा पानी भरे से फसल कर जड़ गले लगो है और उनका ऑक्सीजन ना मिल पाओ है, तो देखा कि उन पौधा सब हैं के बढ़वार ना हो सको है, न बढ़िया विकास हो सको है। तो उन वो भी देखा एक तरह से हम इनके नुकसान हो है। और अब आगू भी हम इन बातचीत में बनल रहे, पहले सुनो ही ये गीत।

0: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: मैं डॉक्टर रामकुमार आनंद गिरिडीह झारखंड से हूं। आज मैं एलर्जी के विषय में बताना चाह रहा हूं। एलर्जी खास करके इस मौसम में कुछ मौसम में भी होता है और कुछ वैसे भी खान पान के चलते होता है। इससे बचने के लिए खास करके कुछ प्रिकॉशन है जिसे लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन में जैसे अगल बगल का एनवायरनमेंट, खाने पीने, दूसरी बात है एलर्जी आसपास लोगों को है तो मास्क वगैरह यूज करें, और इससे भी ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। उनका जो परामर्श निकलता है उसके अनुसार दवा जांच करवाएं और इस तरह एलर्जी से बचा जा सकता है।
0: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: तो देखा कि इतना तो हो गलो और अब जानकारी के तने भी बढ़े के चाहिए। कई किसान देखा कि खेती बाड़ी के साथे साथे पशुपालन करो हथिन, बकरी पालन करो हथिन, सुअर पालन करो हथिन और मछली पालन भी करो हथिन, जिकर से उनकर आमदनी देखा कि बढ़ो है। और देखा कि हम इनकर देश में देखा कि मछली पालन के क्षेत्र में देखा कि केज सिस्टम देखा कि तेजी से बढ़ भी रहल है, और खासकर देखा कि ग्रामीण इलाका में देखा कि ये तकनीक कम लागत में देखा अधिक उत्पादन और बेस आमदनी के जरिया बन रहा है। और हम इनकर के सरकार जे देखा कि केज सिस्टम के जरिए देखा मछली पालन करे ले बढ़ावा भी दे रहा हथिन, और एकरा बढ़ावा दिए खातिर देखा कि सब्सिडी भी दियल जा रहा है। केज सिस्टम से देखा कि हम इनकर सालाना देखा 3 से 4 टन तक हम इन मछली के उत्पादन कर सको हिए। जमीनी तालाब की जरूरत कम होए से पर्यावरण संतुलन बनल रहते, और एकर अलावा केज के उपयोग करे से हम इनकर देखा मछली के बीज उत्पादन खातिर भी करल जा सको है, और जरूरत के अनुसार हम इन अपन केज के एक जगह से दूसरा जगह पर ले जा सको ही है। और एकर उत्पादन के साथे साथे मछली के वैरायटी भी बढ़ो है एकर इस्तेमाल करे से। और देखा स्वयं सहायता समूह और सरकारी समिति के माध्यम से भी देखा सामूहिक मछली पालन के भी बढ़ावा मिल रहा है ई केज सिस्टम के जरिए। तो देखा ई तरी किसान भाई सबन अपन रोजगार बढ़ा सको हथिन और लाभ भी ले सको हथिन। तो देखा आगो भी हम इन बातचीत अपन कार्यक्रम में बनल रहे जे जानकारी हम इन ले ही है कि देखा कि जानकारी है फरसबीन के, बरसाती फरसबीन और भिंडी करेला के खेती कैसे करे थथिन ई किसान हथिन डिलेश्वर प्रसाद, वो अपन अनुभव बतावे थथिन कि कैसे करो हथिन खेती, वो तो सुनल जाए।
3: श्रोता, आज हमारे बीच एक सफल किसान है जो काफी अच्छे तरीके से खेती बाड़ी के कामों को कर रहे हैं, तो आपका नाम?
4: दिलेश्वर प्रसाद।
3: दिलेश्वर प्रसाद, अच्छा, तो आप कब से खेती बाड़ी के कामों को कर रहे हैं?
4: करीबन हम 72 से खेती हम कर रहे हैं। पहले
3: मतलब काफी समय से आप खेती बाड़ी के काम?
4: खेती बाड़ी भी हमारा पैसा था पहले से, पिताजी का सर्विस था, उसके बाद मेरा भी सर्विस हुआ, तो सर्विस मैंने छोड़ दिया।
3: हाँ।
4: और खेती बाड़ी में पड़ गया, पैसा तो कमी नहीं था घर में, इससे चल रहा है अभी। हाँ, खेती बाड़ी बढ़िया है।
3: तो अभी आप क्या क्या अपने खेतों में लगाए हुए हैं?
4: अभी जैसे वेजिटेबल में बता रहे हैं, बीन्स है, भिंडी है और धनिया है, धनिया है, धनिया का पत्ता करीब 3-4 केजी लगाए हैं। अभी जो आपको धनिया दिए ना, वही है, उसको काटेंगे निकालेंगे फिर उसको तैयार करते रहेंगे।
3: अच्छा।
4: एक महीना में तैयार हो जाता है।
3: अच्छा, ये जल्दी तैयार होने वाला है।
4: हाँ,
3: है। और फर्जबीन भी लगाए हैं।
4: हाँ,
3: भिंडी भी लगाए।
4: हाँ,
3: हैं। और टमाटर बैगन भी लगाए?
4: अभी नहीं, टमाटर बैगन का भी सीजन नहीं है, खराब।
3: अच्छा,
4: हो जाएगा।
3: करेला भी लगाए?
4: करेला है, ज्यादा नहीं है, 20-25 पेड़ लगाए हैं, खाने भर लगाते हैं, क्या करेंगे ज्यादा लगा।
3: अच्छा, लेकिन ये जो फरसबीन लगाए वो काफी बड़े स्तर पर लगाए हैं।
4: है।
3: तो ये फरसबीन जो आप लगाए हैं उसके लिए मिट्टी की तैयारी कैसे की है, किस प्रकार आपने उसका लगाए, वो सारा थोड़ा विस्तार से बताएं।
4: पहले तो उसको जुताई 2-3 बार करना है।
3: हाँ हाँ।
4: गोबर का खाद देना है, अगर गोबर नहीं है तो कम्पोस्ट का खाद आता है गोबर वाला, उसको 2-4 बोरी डाल देना है। उसके बाद खेत तैयार हो जाएगा, उसके बाद DAP है, पोटास है, ये सब डाल के हल्का डालना है, ज्यादा नहीं, और उसके बाद बीज को लगा देना।

0: जन्मे सन होने के बाद उसको खुदाई करके मिट्टी चढ़ाने के समय में पोटाश वगैरह
1: मतलब कितना ये जो आप बता रहे हैं हाँ। बीन को लगा दिए तो जैसे कि मिट्टी तैयार करके उसको पात बना लिए ना।
0: हाँ, बिना पात
1: तो
0: पात
1: नहीं
0: ना, तोड़ा तो बनाना ही पड़ेगा ना।
1: हाँ, तो बीजा डाल दिए तो उसका कितना दिनों में जन्मेशन हो गया?
0: मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन में,
1: 4-5 दिन में
0: निकल जाना है।
1: अच्छा, तो 4-5 दिन में आ जाता है तो फिर उसके बाद उसको चालते हैं मिट्टी।
0: हाँ, मिट्टी को फिर मिट्टी चढ़ाना है। मिट्टी चढ़ाने के बाद जब कुछ लत्तर बड़ा हो जाता है तो दवा डालना है।
1: दवा तो जैसे कि आप मिट्टी जब चढ़ाए तो उसको झाक भी उसी समय दे देते होंगे? उस समय नहीं देते हैं,
0: कुछ लत्तर बढ़ने के बाद।
1: कुछ लत्तर बढ़ने के बाद देते हैं,
0: कि दवा वगैरह प्रेशर करने में दिक्कत होता है उस समय।
1: अच्छा, तो मतलब थोड़ा बढ़ जाने के बाद उसमें देते हैं। तो ये इसमें भी तो रोग लगता होगा
0: तो रोग लगता है, दवा देते हैं।
1: दवा देते हैं मतलब अच्छा, कितने बढ़ जाने के बाद आप इसमें झाक देते हैं?
0: खाद
1: नहीं, झाक
0: झाक जो देना है तो इतना बढ़ जाएगा उसका, निकलने लगता है।
1: मतलब ये
0: चढ़ने लायक
1: घुटना के इतना हो जाता है?
0: घुटना इतना में तो बहुत हो जाएगा, कुछ कम में, इतना ही में
1: मतलब
0: 7-6 इंची के बाद उसको दे देना है।
1: 6-7 इंची
0: के बाद उसको मैं लगा देना है, जाली लगाइए या कुछ हो लगा, उतना डाली पता कहाँ मिलेगा। वही बांस का बंध लगा के जाली लगाते हैं, बांस लगा के रस्सी बंधवा के, प्लास्टिक का रस्सी होता है उससे बांध के निकाल देते हैं।
1: अच्छा, बांस बांध करके और उसके बाद
0: प्लास्टिक रस्सी या प्लास्टिक का जाली लगाते हैं बस उसी
1: या से। तो प्लास्टिक रस्सी डाल देते हैं या प्लास्टिक का जाली जो जाला वाला आता है उसको लगा देते हैं। तो अच्छा, तो वो उसको लगा देते हैं तो उसमें आसानी से वो चढ़
0: गया, लत्तर चढ़ गया, फल फूल होना फूलना चालू किया, उस समय थोड़ा दवा फल फूल का दवा डालते हैं।
1: अच्छा, उस डालने से फूल उसका बढ़िया
0: बढ़िया रहता है, ग्रोथ बढ़िया बनाता है।
1: हाँ हाँ।
0: और भिंडी का जैसे है, भिंडी में दवा डालने के बाद इतना हो जाएगा, मिट्टी चढ़ाने के बाद उसमें खाद वगैरह दे दिए और उसमें दवा डालना है 2-3 बार।
1: जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फरस बीन जो है वो आपका लत्तर चढ़ गया, फल फूल वाला दवा दिए तो फल अभी
0: हाँ, हाँ,
1: मतलब कितने दिनों में आपका फल आना शुरू हो जाता है?
0: तकरीबन 1 महीना के बाद हल्का हल्का शुरू होगा।
1: हाँ, हाँ।
0: और 3-4 महीने तक वो फलता रहेगा।
1: अच्छा, 4-4 महीने तक फलता है। फलता है ये। अच्छा, तो मतलब वो जो आप बोल रहे हैं कि काफी बड़े स्तर पे लगाते हैं तो ये तो फिर आपको बाजार में
0: बाजार भेजना ही पड़ता है।
1: हाँ, तो वो उसको बाजार भेजते हैं या आप व्यापारी को देते हैं वहाँ पे क्या?
0: हाँ, व्यापारी को जाके दे देना। अच्छा, लेना
1: व्यापारी को जो दाम ये है, होता है वो मिल जाता है ना?
0: हम लोग को मेहनत आता ना, जैसे कि शारीरिक है वो शारीरिक क्षमता को लगाते रहते हैं जिसमें हमारा बना रहे, नहीं तो क्या जरूरी था खेती करने।
1: हाँ, तो इसके लिए। और उसके साथ साथ आपने कहा कि भिंडी भी आप 2-3 प्रकार का लगाते हैं, तो कितनी वैरायटी की भिंडी?
0: 3 वैरायटी के लगाए हैं तो थोड़ा थोड़ा लगाए खाने लायक। अभी एक शुरू हो गया फलना।
1: अच्छा,
0: एक दूसरा है वो 15 दिन के बाद।
1: क्या क्या वैरायटी है जो क्या लगा?
0: भिंडी का 2-3 क्वालिटी का है।
1: कौन सा? ये
0: नमो भूल जाते हैं दुकान से ले
1: जाते हैं, नाम नहीं। एक भिंडी होती है वो छोटा से कई निकलता
0: हाँ,
1: है
0: उसमें। उसको भी लगाए
1: वो। और एक लाल प्रकार,
0: लाल भिंडी भी नहीं लगा रहे हैं?
1: नहीं लगा,
0: लाल अभी नहीं होगा। लाल ठंडा के समय में,
1: लाल ठंडा के समय होगा। अच्छा, भिंडी में इसी में ही कई प्रकार की प्रजाति होती है?
0: बहुत प्रजाति है।
1: तो तीनों प्रजाति ही?
0: अभी 3 प्रजाति के लगाते हैं।
1: अच्छा, 3 प्रजाति का है। तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, कैसे क्या लगाते हैं?
0: जैसे पहले खेत तैयार हो गया उसमें पांच बना दिए, झूरा बना दिए, उसके बाद लगा दिए DAP छिड़क के लगा दिए, गोबर है गोबर ऊपर छिड़क के लगा वाला है। और जन्मेशन होने के बाद उसको खुरपी करना है बढ़िया से, बढ़िया से खुरपी किए, मिट्टी चढ़ाए और पानी दिए। मिट्टी चढ़ाने के बाद तुरंत पानी देना है। पानी देने के बाद 4-5 दिन के बाद फिर खुरपी करना है। खुरपी करके
1: मतलब ये एक बार नहीं खुरपी करते,
0: दो बार करने से जब फिर दे दीजिए सल्फेट वगैरह छोड़ दीजिए। अगर जब फूल आना चालू करेगा उस समय दवा डालिए, फल फूल का दवा डालते रहिए, कोई दवा नहीं। अगर बीमारी लग रहा है तो
1: उसमें भी तो पत्ता सिकुड़ता
0: है उसमें तो उसमें देते हैं, साफ पाउडर है और कुछ है और नहीं उससे मान रहा है।
1: हाँ।
0: तो हम लोग कैरेंट दवा जो उसको डालते हैं या मोनोसिल डालते हैं, उससे सब ठीक हो
1: मान जाता है। तो जैसे कि कई किसानों को हमने देखा है कि जैविक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जैविक कीटनाशक कितना प्रभावकारी है?
0: प्रभाव ज्यादा नहीं है।
1: दोनों का रासायनिक वाला भी थोड़ा इस्तेमाल करते हैं और जैविक वाला?
0: जैविक देखिए घर का ही जैविक खाद बढ़िया होता है।
1: हाँ।
0: कैसे है?

0: उसको अपने बनाना।
1: जैसे नीम का खली,
0: नीम का खली है,
1: हाँ,
0: और गाय का मूत्र है,
1: हाँ,
0: ये सब मिला के,
1: मतलब वो क्या आपको वो लोग कहते हैं जैसे कि जीवा अमृत वगैरह भी बनाते हैं क्या?
0: नहीं नहीं बनाते
1: जीवा अमृत या घन जीवा,
0: नहीं सब नहीं बना सकते,
1: उसको नहीं बनाते नहीं। मतलब वो नीम उनको उबाल करके बनाते हैं ना?
0: नीम लाने के बाद पत्ता है या फल है उसका, उनको पूरे उबाल देते हैं, उबालने में गौमूत्र मिला के बस उसी को छिड़क दीजिए, कुछ नहीं
1: तो मान जाता है
0: एकदम पूरा।
1: तो उस तरह से आप उसको वो कीटनाशक बना के छिड़काव करते हैं? अच्छा, और जब नहीं बना पाए तो रासायनिक?
0: तो रासायनिक दे देना है,
1: जो मतलब अधिकतर वैसे बना लेते हैं।
0: हाँ, बना लेते
1: बना लेते हैं।
0: हमारी मैडम बहुत तेज है, बना लेती है।
1: अच्छा अच्छा, तो घर में आपकी पत्नी बना लेती है,
0: खेती के लिए माहिर आदमी है।
1: तो और साथ में आपने बोला कि करेला भी लगाया है,
0: करेला
1: तो क्या बरसाती वाला करेला?
0: हाँ, बरसाती है,
1: तो वो भी काफी बेहतर तरीके से लगाते होंगे?
0: नहीं, उसको जो है ना रासायनिक विधि से नहीं लगा रहे,
1: ऐसे
0: गोबर डाल दिए नीचे, मिट्टी चढ़ा दिए, करेला का दाना लगा दिया। और आजकल तो पहले तो हम लोग उसको पौधा तैयार करते थे, गर्मी के सीजन में पौधा तैयार करेंगे या ठंडा के समय में, और अभी वाला मैं इसे दाना डालेंगे।
1: अच्छा।
0: दाना डालने से वो निकल
1: जाए?
0: हाँ, निकल जाए।
1: अच्छा।
0: उसमें खोदा के फिर खाद उद डाल के मिट्टी चढ़ा दीजिए, लतर चढ़ रहा है,
1: चढ़ है। उसको भी तो झाँक देना पड़ता है, बरसात है।
0: हाँ, तो सब में देना ही पड़ता है ना,
1: क्योंकि बरसात अब आ गया है, तो उससे बचाव के लिए। नहीं तो कभी कभार होता क्या है कि मिट्टी से लग जाता है, तो कभी कभार फल भी खराब होता है।
0: और मिट्टी में तो लगने के बाद तो खराब है, वो खाने ही नहीं उसको,
1: तो उससे बचाने के लिए वो झाक दे देते हैं। या तो आप जैसा कि आप अभी बता रहे हैं
0: प्लास्टिक
1: का और जाली लगा देते हैं, तो उससे
0: एकदम कोई दिक्कत नहीं,
1: आराम से दोनों तरफ बांस का ये दे देते हैं,
0: दोनों तरफ बीच में जाली टांगा हुआ टाइट करके बांधा हुआ, बीच बीच में लोहे का तार डाला हुआ जिसमें।
1: अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीम भी लोग इस समय डालते हैं,
0: डालते हैं पौधा वाला डालते हैं,
1: पौधा वाला डालते हैं,
0: लेकिन नहीं डाल रहे हैं।
1: लत्तर वाला तो टाइम लगता है ना,
0: बहुत लेट करता है, और पौधा वाला है फिर देखिए, पौधा जो है नवंबर दिसंबर में लगे तो बहुत फल देता है
1: पौधा वाला।
0: हाँ, और अभी नहीं देगा फल।
1: अच्छा, तो वो भी काफी है, मतलब
0: बहुत। अगर 100 ग्राम दाना लगाने के बाद उसको कम से कम आप कितना खाइएगा और कितना बांट दीजिएगा उसका हिसाब नहीं,
1: पौधा वाला।
0: हाँ, बहुत फलता है।
1: तो आप हमारे किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे खेती करना बेहतर है? लाभ भी होता है काफी अगर मेहनत से खेती किया,
0: मेहनत करने के बाद तो लाभ,
1: खेती करने से लाभ तो होता है ना?
0: हाँ, तो लाभ तो है, घर का सब्जी मिल जाता है,
1: तो
0: ज्यादा हो जाने के बाद बाजार में बिक्री हो जाता है,
1: बिक्री हो जाता है तो अच्छा लाभ भी मिल जाता है, और घर में खाने के लिए भी हो जाता है। तो डिलेश्वर प्रसाद जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है भाई।
2: तो देखा, अभी हम इन सुने थल ये जानकारी, और जानकारी है कि देखा कि बरसाती फ्रेंच बीन, भिंडी और करेला के देखा कि खेती कैसे करो हथिन ये डिलेसर प्रसाद जहलथिन, वो बड़ी बेस बात बतेलथिन कि वो कैसे कातरी से अपन खेती करो हथिन और लाभ भी कमाओ हथिन। और देखा कि अभी जे महीन देखा समय चल रहा है कि खरीफ फसल के उचित देखभाल करे के लिखा के समय है, और साथ में देखा अगेत सब्जी के बुआई के भी समय आगले है, तो और कई किसान हथिन के देखा कि धान के फसल के देखा कि पौधा के तेजी से बढ़वार खातिर देखा कि ओकर में यूरिया के छिड़काव करे हथिन, ओकर में नमी हल्का नमी जखन रहते तखन छिड़काव करे से उनकर बढ़वार बढ़िया होते। साथ में देखा कि मूँगफली के पौधा के जड़ में देखा मजबूती दिए खातिर मिट्टी भी चढ़ावे के समय है, और साथ में जे दलहनी फसल लगेले हथिन ओकर में कीट ना लगे, ओकर कीट के प्रकोप ना होए, ओकर से बचावे के भी ध्यान दिए के जरूरी है। और साथ में देखा कि कई भारी बारिश के कारण देखा कि खरपतवार भी उगा है, तो ओकर निराई गुड़ाई भी समय से करे के चाहिए। तो यह जानकारी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा मीनाक्षी के अनुमति देथिन। नमस्कार, जोहार।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि चास प्रखंड में 100% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और जरीडीह क्षेत्र में 99.84%, बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र में 85.63% तथा चास नगर निगम क्षेत्र में 84.96% डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। गुमला समाहरणालय में नीति आयोग के नीति तारा उपकरण के प्रभावी उपयोग पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आकांक्षी जिला और डुमरी आकांक्षी प्रखंड के विकास संकेतकों की निगरानी, डेटा विश्लेषण तथा साक्ष्य आधारित योजना निर्माण की जानकारी दी गई। रामगढ़ सदर अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नवजात बच्चियों की माताओं को सम्मानित कर किट वितरित की गई। अधिकारियों ने बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा और रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक के साथ भारत के लिए दोहरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना, बस कुछ ही पल में।

कार्यक्रम अंगना सुन रही सभी बहनों को आपकी सखी वंदना अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, आप सभी कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि मजे में होंगे। वैसे तो बहनों, बारिश का मौसम है, पर बारिश के साथ साथ गर्मी भी बहुत है। और इधर दो दिन से कड़ी धूप थी, आज हल्की थोड़ी बारिश हुई है, तो थोड़ी सी राहत जरूर है। और बहनों, शाम का वक्त ही जो होता है कि हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकलता है जो हमें थोड़ा सुकून देता है, वरना दिन भर काम ही काम होता है। पर इस समय जो शाम का वक्त होता है, थोड़ा सा समय निकालकर हम अपने पसंद के गीत सुनकर

0: अपनी थकान को दूर करते हैं और अपने आप को फिर से रिचार्ज करते हैं। तो आइए हम भी इस गीत का आनंद उठाते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
3: फसा! अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बहनों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है एवं दैनिक जीवन में महिलाओं का स्वच्छता में योगदान। बहनों, स्वच्छता केवल हमारी आदत नहीं बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की पहचान है। साफ सफाई से हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है, बीमारियां दूर होती है और जीवन बेहतर बनता है। स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है और महिलाओं का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि घर के रखरखाव से लेकर परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों में अच्छी आदतें डालने का काम, साथ ही समाज में साफ सफाई की देखरेख सभी करती हैं हम महिलाएं। महिलाएं रोजाना घर की साफ सफाई, बर्तन और कपड़ों की धुलाई सभी कामों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखती हैं। साथ ही रसोई में साफ सुथरा माहौल रखना यानी किचन की साफ सफाई का हर महिला विशेष ख्याल रखती है, और सभी को ताजा भोजन बनाकर देना, साथ ही पीने का पानी का विशेष ध्यान रखना यानी हमेशा पानी को ढक कर रखना, क्योंकि गंदे पानी पीने से कई सारी बीमारियों का खतरा रहता है। तो इसलिए महिलाएं इन बातों का हमेशा बहुत ही बारीकी से ध्यान रखती हैं कि जो भी खाना बनाए वो खाना स्वच्छ तरीके से बना हुआ हो, हमेशा भोजन को ढक के रखना ताकि किसी तरह का उसमें गंदगी या मक्खी मच्छर ना बैठे। इन सभी बातों का महिलाएं बहुत ही बारीकी से ध्यान रखती हैं। साथ ही साथ जो होता है कि अगर हम अपने जो महिलाएं होती हैं वो घर की महिलाएं जो अपने कूड़ा जो होता है घर में उसका भी विशेष सही तरीका से प्रबंध करती हैं, यानी गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करके कूड़ेदान में डालती हैं। साथ ही बच्चों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना हम महिलाओं का काम होता है, और बच्चों को बताना कि अगर कोई भी चीज़ बच्चे खाते हैं तो रैपर हो या कोई भी जो कागज़ का टुकड़ा है उन्हें कूड़ेदान में डालना है। साथ ही अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम मतलब हम अपने घर में सिखा सकते हैं बच्चों को भी कि स्वच्छ कैसे रहना है और कैसे स्वच्छ

स्वच्छता पर ध्यान रखना है। साथ ही बच्चों को सुबह जल्दी उठाने से लेकर उनके नाखून काटने तक की आदत को सिखाना, ताकि बच्चे जाने कि नाखून में कितने सारे कीटाणु होते हैं। वो सब महिलाएं ही ध्यान रखती हैं कि बच्चों का नाखून काटना है, उनके नाखून कटे हैं या नहीं, और बच्चों को भी कूड़ेदान में कचरा डालने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही इधर उधर कचरा ना फेंकने की सलाह देती हैं। साथ ही साथ समाज में भी महिलाओं को है कि बताती हैं कि स्वच्छता कैसे रखना है, बाहर शौच नहीं जाना है, ताकि गंदगी बाहर ना फैले और जिससे हम सुरक्षित रह सके और स्वस्थ रहें।

0: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: मैं डॉक्टर रामकुमार आनंद गिरिडीह झारखंड से हूं। आज मैं एलर्जी के विषय में बताना चाह रहा हूं। एलर्जी खास करके इस मौसम में कुछ मौसम में भी होता है और कुछ वैसे भी खान पान के चलते होता है। इससे बचने के लिए खास करके कुछ प्रिकॉशन है जिसे लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन में जैसे अगल बगल का एनवायरनमेंट, खाने पीने, दूसरी बात है एलर्जी आसपास लोगों को है तो मास्क वगैरह यूज करें, और इससे भी ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। उनका जो परामर्श निकलता है उसके अनुसार दवा जांच करवाएं और इस तरह एलर्जी से बचा जा सकता है।
0: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: साथी बहनों, आज हम एक और विषय पर भी चर्चा करेंगे कि जल संरक्षण हर घर की जिम्मेदारी है। जी हाँ बहनों, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और हमारे ग्रह में सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक है, वो है जल। हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, फिर भी पीने का पानी की जो मात्रा है वो मात्र 3% है, यानी बाकी का पानी खारा है जिसे हम उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए जल संरक्षण हम सबकी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बहनों, पानी की हर एक बूंद की कीमत को समझकर घर घर में छोटे छोटे बदलाव लाकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट से बचा सकते हैं। बहनों, घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम पानी बचा सकते हैं। जैसे नहाते समय सावर के बजाय अगर हम बाल्टी का इस्तेमाल करें तो इससे पानी कम खर्च होता है। साथ ही अगर घर में हम गाड़ी वगैरह धोते हैं तो उसकी जगह पर भी पाइप की जगह अगर हम बाल्टी का इस्तेमाल करें तो भी हम पानी बचा सकते हैं, क्योंकि पाइप से अगर हम गाड़ी धोते हैं तो क्या होता है, हमारी आदत होती है कि हम नल खुला छोड़ देते हैं और पानी यूं ही बर्बाद होता रहता है। साथ ही साथ आजकल हर घर में वाटर प्यूरिफाई होता है, तो ऐसे में जो एक्वागार्ड से जो पानी, वेस्ट पानी जो निकलता है, उसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वो पानी हमारा ऐसे ही नाली में बह जाता है। पर अगर हम वही पानी को स्टोर करके रखें तो उस पानी को हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ उस पानी से हम अपने पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, घर का आंगन है तो उस हम आंगन को धो सकते हैं, या और भी कई तरीके से हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर घर में हम सब्जी वगैरह बनाते हैं जो धोते हैं, तो उस पानी को भी अगर हम फेंकने के बजाय रीयूज़ करना चाहें तो उस पानी को भी हम पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, उससे भी हम पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर घर में

0: होता है, नल टपकता है या कहीं पे भी पानी पाइप में लीकेज है, तो हमें उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए ताकि बूंद बूंद भी पानी बर्बाद ना हो सके। साथ ही साथ बच्चों को सिखाना चाहिए कि दांत साफ करते समय या हाथ धोते समय नल को खुला ना रखे, जब जरूरत हो तभी वह नल खोले और पानी का इस्तेमाल करे। साथ ही साथ जो घर का हमारा आंगन होता है या जहाँ हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उस सारी जगह को हम पक्का का करवा देते हैं, पर अगर हम उस जगह को थोड़ा गहरा करके मिट्टी के डाल के पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, बरसात का जो पानी होता है वह भी सीधे ज़मीन में जाता है, और जब ज़मीन में जाता है तो वो पानी जमीन उस जो भूमिगत जल का जो होता है वो लेवल बढ़ता है। तो हम इस तरीके से पानी का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्षा का जल होता है का संचय होता है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी छत है या आंगन में जो बारिश का पानी होता है जो नाली में बर्बाद हो जाता है, उसे हम सही तरीके से पाइप लगा के या तो ज़मीन के अंदर हम उसको ऐसा जगह पे उस पानी को गिराए कि सीधे वह ज़मीन के अंदर चला जाए, या तो किसी टैंक में इकट्ठा करके हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के साफ सफाई कर सकते हैं, पौधे वगैरह में डाल सकते हैं। तो इस तरह हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के हम जल को बचा सकते हैं। साथ ही साथ सभी को हमें घर के और भी जो मेंबर होते हैं उन्हें भी बताना चाहिए कि पानी का बर्बादी ना करें, खास करके बच्चों को जब नहाने जाए तो उन्हें भी बताना चाहिए कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें, जितना नहाने का जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। तो ऐसे हम पानी का बर्बादी को बचा सकते हैं और जल संरक्षण हम कर सकते हैं। तो हम कार्यक्रम में आगे आपके साथ और भी बातें करेंगे। मरा भाई, अभी आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण। बुटीक एक अच्छा व्यवसाय है, बता रही हैं रीदा खार, उनसे बातें कर रही हैं श्वेता श्रीवास्तव।
1: सखियों, सजना संवरना हर किसी को अच्छा लगता है। खूबसूरत स्टाइलिश कपड़े पहनना तो सबों को बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी कई सखियां होंगी जिनकी पसंद कपड़ों के बारे में बहुत अच्छी होंगी। कपड़ों के रंगों और डिजाइनों के मामले में उनकी सहेलियां रिश्तेदार उनकी खूब तारीफ भी करते होंगे। यहाँ तक कि कई बहनें नए कपड़े सिलवाते समय वो खुद भी अपने आइडियाज दर्जी को देकर खूबसूरत पोशाक की डिजाइनिंग में अपना रचनात्मक योगदान देती होंगी। सखियों, हमारी आज ऐसी कई बहनें हैं जिन्हें सिलाई कढ़ाई करना बहुत पसंद है और वो अपनी रचनात्मकता को घर बैठे ही किसी व्यवसाय का रूप देने की प्रबल इच्छा भी रखती होंगी। तो सखियों, आज बुटीक का व्यवसाय बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। यदि आप बहने सिलाई कढ़ाई की इच्छा रखती हैं तो सखियों आप इस व्यवसाय को अपना सकती हैं और घर बैठे अच्छी खासी आमदनी कर सकती हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रीदा खान जी, जिन्होंने बुटीक के काम को स्वरोजगार के रूप में अपनाया है और अच्छी खासी आमदनी वो घर बैठे कर रही हैं। तो रीदा खान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: रीदा जी, आप सबसे पहले हमारी बहनों को बताएं कि ये बुटीक क्या है।
2: बुटीक एक छोटी सी दुकान है जो महिलाओं के लिए जहाँ कपड़े मिलते हैं या फिर डिजाइनर कपड़े बनवाए जाते हैं।
1: रीदा जी, स्वरोजगार के तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आपने बुटीक को ही क्यों चुना?
2: बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूं, और क्योंकि मैं छोटी जब थी मैं छोटे छोटे कपड़े अपने गुड़ियों के लिए और फिर फटे जो भी घर में रहते थे फटे हुए कपड़े ये वो मुझे सिलने का बहुत शौक था, तो मुझे स्टार्टिंग से ही उसमें बहुत इस चीज में इंटरेस्ट थी, इसलिए मुझे शौक था करने का फैशन डिजाइनिंग, तो मैंने इसी चीज में अपनी रुचि दिखाई।
1: यानी कि बचपन से ही आपको शौक रहा है बुटीक के काम में। अच्छा, बुटीक बिजनेस को करने के लिए आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ी थी शुरू शुरू में?
2: जैसे कि मैंने अपना जो बिजनेस है स्टार्ट किया घर से ही किया, तो मुझे उतनी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ी। लमसम 20 से 30 हजार में हो गया, लेकिन यही चीज अगर आप मार्केट प्लेस में करोगे तो आपकी एक्सपेंस आपके कॉस्ट और ज्यादा भागेंगे, तो उसमें 60 से आपको 70 हजार लग जाएंगे।
1: यानी कि हमारी जो बहनें घर बैठे इस काम को करना चाहेंगी, हाँ, उन्हें 20-30 हजार रुपए में वो इस काम को शुरू कर सकती हैं।
2: बिल्कुल।
1: और यदि मार्केट प्लेस में अगर वो करना चाहेंगी तो उसके लिए तो उन्हें दुकान लेना पड़ेगा और फिर दुकान की सजावट वगैरह में खर्चा पड़ेगा ही, है ना। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हमारी जो बहनें इस काम को करना चाहेंगी बाहर में मतलब मार्केट प्लेस में खोलना चाहेंगी तो उसके लिए उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी?
2: बुटीक खोलने के लिए आप

0: को फैशनेबल जैसे कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, फिर ट्रेडिशनल ड्रेसेस रखने होंगे। फिर इसके लिए सिलाई मशीन, ओवरलोड मशीन, कढ़ाई मशीन, बड़े बड़े मशीन्स और फिर रैक, टेबल, चेयर, ये सब आपको प्रोवाइड करना होगा अपने बुटीक के लिए। और फिर आपको शो, जैसे आप एक रूम ले रहे हो तो वो एक इस तरीके से रहे कि उसके एक हिस्सा जो है वो रोड की तरफ रहे, ताकि वो लोग जो भी जा रहे हो उसे गुजर रहे हो तो वो उसकी तरफ वो आकर्षित हो,
1: उनकी नजर पड़नी
0: चाहिए। क्योंकि जैसे मैनीक्वीन भी आप शोकेस में अगर डाल रहे हो, उसमें आप ड्रेस डाल रहे हो, तो ऐसे ड्रेस डालो जिससे आप, जिससे लोग की नजर पड़े और वो आए, उस चीज़ से अट्रैक्ट हो।
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: इसके लिए तो लाइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ता होगा।
0: हाँ, आपको इसके लिए इंटीरियर भी बहुत अच्छा रखना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कपड़े पे इस चीज से प्रभाव पड़ता है। जो जितनी ज्यादा लाइट रहेगी उससे ड्रेस और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। और फिर आप दीवारों पे कुछ पोस्टर लगाइए, वो सारी चीज को आपको ध्यान रखना,
1: ये सबसे बहनें जो है वो आकर्षित होती हैं।
0: जी,
1: तो अभी आपने बताया कि बुटीक खोलने के लिए एक अच्छा खासा रूम होना चाहिए, है ना, और लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। या हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि बुटीक खोलने के लिए लेटेस्ट फैशन की जानकारी होनी भी तो बहुत जरूरी होगी।
0: नॉलेज तो आपको होनी चाहिए फैशन के बारे में, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये सारे फैशन को फॉलो कर सकते हैं।
1: अच्छा, आजकल तो पुराने डिजाइन भी कपड़ों के जो है ना वापस लौट रहे हैं, उनका दौर भी आ रहा है।
0: वो लौट रहे हैं, लेकिन उसमें जो डिजाइनर्स होते हैं वो अपना इनोवेटिव आइडियाज लगा के कुछ नया करते हैं, वो सेम चीज फॉलो अप नहीं हो रहा है, उसमें कुछ इनोवेटिव और कुछ नया ही
1: नयापन आ रहा है थोड़ा।
0: जी, और आजकल सिर्फ फैशन कपड़ों में ही सिर्फ नहीं रह गया है, लोग चाहते हैं कि जैसे हम अगर ड्रेस जो कैरी कर रहे हैं उसके साथ हम अपना फुटवेयर भी वैसे ही पहने, हम हैंडबैग्स जो कैरी कर रहे हैं वो भी उसी टाइप डिजाइन में रहे। तो ये सारे चीज डिजाइनर्स जो होते हैं, जो फैशन डिजाइनिंग किए हुए हैं और जो बुटीक है, ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं।
1: अच्छा, और भी कई बातें होंगी जिनका बहनों को ख्याल रखना होगा यदि वो इस काम को करना चाहे तो, जैसे कपड़ों की क्वालिटी का।
0: हाँ, जब आप कपड़े फैब्रिक जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये क्वालिटी का ध्यान रखना होगा कि वो किस क्वालिटी का है, क्योंकि बहुत सारे मशीन्स जो अलग अलग मशीन्स होते हैं, तो हर एक मशीन को जो कपड़े जिसे मतलब सिलते हैं तो आइडिया होना चाहिए और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए कपड़े का, ताकि वो टिकाऊ हो।
1: यहाँ एक बात हम आपसे और भी पूछना चाहेंगे रिदा जी, कि ओवर प्राइसिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है इस बिजनेस पर?
0: ओवर प्राइसिंग का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट बढ़ाकर नहीं किसी चीज को सेल करना चाहिए। और कस्टमर भी ऐसा नहीं कि फैशन फॉलो अप नहीं करे, तो उनमें भी पता है कि फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, और तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ाकर भी किसी भी फैब्रिक को सेल नहीं करना।
1: हाँ, ज्यादा प्राइस होगा तो फिर आपके पास कस्टमर्स कम आएंगे। सही बात है। अच्छा, आप हमारी बहनों को बताएं कि इस काम के लिए आपने इसका कोर्स भी किया होगा।
0: जी, मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इसका कोर्स किया है, और ये इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होता है, जो आप ये बीए बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग है, ये 3 इयर्स का कोर्स है, और ऐसे ये डिप्लोमा 1 ईयर का भी कोर्स होता है। और अगर ऐसा वहाँ पे आप अवेबिलिटीज है तो निफ्ट भी है, पर्ल एकेडमी, ये सारे भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जाके इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप 6 मंथ का टेलरिंग भी आप कर सकते हैं।
1: तो हमारी जो बहनें घर बैठे इस काम को करना चाह रही हैं, तो उन्हें शॉर्ट टाइम में कौन सा कोर्स करना चाहिए?
0: उन्हें फिर टेलरिंग 6 मंथ का जो है वो टेलरिंग कोर्स करके इस लाइन में वो आ सकती हैं।
1: वो कहाँ से इस कोर्स को कर सकती हैं?
0: ये हर एक जगह अवेलेबल होता है।
1: अच्छा, आप तो बुटीक का काम कर रही हैं, बहुत सारे कपड़े, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खूबसूरत कपड़े, नए डिजाइन के स्टाइलिश कपड़े की बिक्री कर रही हैं, तो हमारी बहनों को ये बताइए कि आप मार्केटिंग किस तरह से करती हैं?
0: मेरे अगल बगल के आस पड़ोस के लोग भी आते हैं जो मेरे शॉप से ले जाते हैं कपड़े, और नहीं अगर कुछ और भी पॉसिबल होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ अपने सारे कपड़े के पिक्चर्स, और गूगल में डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, ये सारी चीज में डालती हूँ ताकि लोग को पता चले।
1: अच्छा, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी आमदनी हो जाती है महीने में?
0: ये डिपेंड करता है ओकेजन पे और कस्टमर पे, जिन लोग को जब भी जरूरत जैसे पड़ती है उस हिसाब से वो आती है।

0: हैं, तो कुछ मतलब एक दिन में कुछ ना कुछ बिक ही जाता है।
1: महीने में आपको कितनी आमदनी हो जाती होगी?
0: महीने में 20 से 30 हो जाती है आमदनी मेरी।
1: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 20-30 हज़ार रुपए आपके घर बैठे आपकी आमदनी हो जाती है इस काम से। तो रीदा खान जी, आज हमारी सखियों को आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमारी सखियां भी सोच रही होंगी इस काम को शुरू करना। तो आज हमारे कार्यक्रम में आप आई और हमारे सखियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: तो बहनों, उम्मीद करती हैं कि इस भेंट वार्ता से आपको जरूर फायदा हुआ होगा, और इसी वार्ता के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी सखी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

तो अभी आपने सुना आशा भोसले को फिल्म इजाजत में, और आइए आगे सुन रहे हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म प्यासा सावन फिल्म का ये नगमा।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। तो हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
3: और ये
2: मेरी गुड़िया की ना।
4: पर दादी हाँ? आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो क्या
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क।

0: रहिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राज्य में एसआईआर के तहत इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए अब मात्र 2 दिन का समय। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बचे हुए मतदाताओं से जल्द प्रपत्र जमा करने का किया आग्रह। भाजपा ने राज्य सरकार पर ट्रेजरी घोटाले में शामिल अधिकारियों को बचाने का लगाया आरोप। घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर राज्यभर की इकाइयों में हुए कार्यक्रम। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को उमस से मिली राहत। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटरों के पास इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए अब मात्र 2 दिन शेष हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 94.96% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। राज्य के 99.90% मतदाताओं को प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। श्री कुमार ने बाकी बचे मतदाताओं से जल्द प्रपत्र जमा करने का आग्रह किया है। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि चास प्रखंड में 100% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और जरडी क्षेत्र में 99.84%, बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र में 85.63% तथा चास नगर निगम क्षेत्र में 84.96% डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर जांच प्रभावित करने और वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मामले की निष्पक्ष तथा सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि लगभग 10,000 करोड़ रूपये का हिसाब नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
3: कि सरकार सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रही है, किसको गिरफ्तारी कर रही है? सिपाहियों को। अरे दोष है उनका, उनको भी गिरफ्तार कीजिए। लेकिन जो डीएसपी एसपी जो मुख्यमंत्री के होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और जो सीधे तौर पर ट्रेजरी अफसर है, उनको उन्होंने नहीं हटाया और जांच में सहयोग उन्हीं से ले रहे हैं, यही ट्रेजरी अफसर।
1: झारखंड में कुल 60 लाख रुपए के इनामी 16 माओवादी कल आत्मसमर्पण करेंगे। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ गांधी और 10-10 लाख रुपए के इनामी 3 जोनल कमांडर भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लगातार चल रहे माओवादी विरोधी अभियान और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में उग्रवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं।

0: राज्य के परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना के लिए कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समारोह दोपहर 1 बजे आयोजित होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आज रांची शहरी क्षेत्र के 7 वार्डों में व्यापक डेंगू सर्विलांस अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों की जानकारी जुटाई, संभावित डेंगू मरीजों की पहचान की तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों की जांच की। सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि वार्ड संख्या 21, 22 और 23 में अभियान के दौरान 76 घरों तथा 680 पानी वाले बर्तनों की जांच की गई। इनमें 16 घरों और 25 बर्तनों में डेंगू के लार्वा पाए गए। वहीं वार्ड संख्या 5, 16, 27 और 28 में 90 घरों तथा 566 पानी वाले बर्तनों की जांच की गई, जिनमें 13 घरों और 13 बर्तनों में लार्वा पाए गए। उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त विजय गुप्ता ने गिरिडीह में राजस्व संग्रहण समेत कई मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संगठित आर्थिक अपराध और बालू तस्करी पर सख्त कार्रवाई, म्यूटेशन में तेजी तथा वन अपराध रोकने के निर्देश दिए।
1: भूमि सुधार से संबंधित म्यूटेशन, अतिक्रमण, जमाबंदी कैंसिलेशन, GMFT फंड, अवैध खनन, ट्रांसपोर्ट के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा जो सघन अभियान, उत्पाद निबंधन आदि मामलों में यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से मैंने समीक्षा की।
0: पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 88वां स्थापना दिवस आज झारखंड में विभिन्न इकाइयों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। खूंटी स्थित 94वीं बटालियन और चाईबासा की 174वीं वाहिनी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा जवानों को राष्ट्र सेवा, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियानों, आतंकवाद निरोधक कार्रवाई और आपदा राहत में CRPF की भूमिका की सराहना की। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद हुई बारिश से पिछले 2 दिनों से जारी गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, खूंटी समेत आसपास के जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कोल्हान क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह है। टूर्नामेंट का दूसरा मैच 29 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स FT और डिफेंडर्स FC के बीच खेला जाएगा। इसके लिए मुफ्त टिकटों का वितरण आज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश, विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राज्य में SIR के तहत इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए अब मात्र 2 दिन का समय। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बचे हुए मतदाताओं से जल्द प्रपत्र जमा करने का किया आग्रह। भाजपा ने राज्य सरकार पर ट्रेजरी घोटाले में शामिल अधिकारियों को बचाने का लगाया आरोप। घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर राज्य भर की इकाइयों में हुए कार्यक्रम, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को उमस से मिली राहत। अगले दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में SIR का काम लगातार जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने बताया कि जिले में 17,085 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है। उपायुक्त ने सभी शेष मतदाताओं से आग्रह किया है कि इस कार्य को अत्यंत आवश्यक समझते हुए बिना विलम्ब अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित BLO के पास जमा करें ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। DC ने कहा कि 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। लोहरदगा जिला में अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक व्यक्ति की हत्या करने आए दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SDPO श्रद्धा क्रिकेटा ने बताया कि
2: ऐसा हुआ है कि 20 तारीख को गुप्त सूचना मिला SP सर को, जिसके आलोक में एक टीम गठन किया गया। उसमें थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर और थाना के अन्य लोगों के साथ मिलकर के ये टीम जाकर के एक एल्ट्रो गाड़ी है उसको पकड़ी है जुड़िया के आसपास, और इसमें तीन लोग थे और हथियार के साथ बरामद हुआ। इसमें एक भाग दो लोगों की अरेस्टिंग हुई है और अवैध हथियार साथ में प्राप्त हुआ है।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिला का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वे अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रही हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि
3: पिछलार प्रखंड में गई थी और विशेष रूप से यहां देखेंगे तो हिंडालको से संबंधित जमीन अधिग्रहण और अपने नाम से खतियान ले लिया गया है, ये बहुत बड़ा मामला है। साथ ही साथ यहां लोगों का जो पंजी 2 में जमीन चढ़ा है वो 00 हो गया है, उनको संशोधन करना है। कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, कई लोगों का पेंशन से संबंधित मामले हैं, आवास से संबंधित मामले हैं, ऐसे ही कई विधवा पेंशन से संबंधित मामले हैं, ऐसे छोटे बड़े लगा करके बहुत सारे मामले हैं जो आज आयोग के संज्ञान में आया है।
1: लोहरदगा जिला में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस के द्वारा विभिन्न थानों में जनता दरबार लगाया जा रहा है। इस मौके पर जिले के SP सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान कर रहे हैं। लोहरदगा के SP सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
4: जब से मैं यहाँ लोहरदगा में आया हूँ बहुत से मामले जो मुख्यालय में भी मेरे पास आते हैं उसमें बहुत सा छोटे मोटे विवाद के कारण भी लोग आते हैं। इसमें एक बड़ी जो बाधक है वो जमीन विवाद से संबंधित है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, उसी में एक दूसरे पर नीति प्राथमिकी के लिए भी आवेदन देते हैं। उसी उन सब को दूर करते हुए और भी जो इनके यहाँ के ग्रामीणों के समस्या है कानून से संबंधित, खाना से संबंधित या किसी प्राथमिकी से संबंधित, उसकी जानकारी लेने के लिए आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है।
1: लोहरदगा जिला में बरसात के मौसम में सर्प दंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। एक महीने में लगभग 45 लोगों को सांप ने काटा है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। जिले में वर्षा के बाद अब किसान खेतों की ओर चल पड़े हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। लोहरदगा जिला में धान रोपनी का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर।

0: आकाशवाणी समाचार लोहरदगा।
1: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है हमारा अगला कार्यक्रम आपकी योजना बस कुछ ही पल में।

0: तो कार्यक्रम आपके योजना में आज हम सुनेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संकलन एवं वाचन दिया है प्रकाश कुमार राणा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक है विक्रम कुमार रंजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी योजना का पुनः प्रसारण।
1: नमस्कार। स्वास्थ्य किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां सामान्य उपचार के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, आवश्यक जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, इसकी क्या भूमिका है और यह आम जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज हम आप पहुंचे हैं सदर हजारीबाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आइए जानते हैं यहां से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में।
2: मैं डॉक्टर अमरेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर हजारीबाग से हूं, वहां पदस्थापित एवं कार्यरत हूं। अभी हमारे यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरे अंडर में 2 PHC हैं, 16 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। अभी हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और PHC में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से जो भी संबंधित है, जैसे कि ANC हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, डिलीवरी हो गया, उससे संबंधित सभी सुविधाएं सभी सेंटर्स में मेरा उपलब्ध है। साथ ही साथ जो इसके अलावा डेंटल के भी मेरे यहाँ डॉक्टर्स हैं, वो डेंटल का भी कार्य देखते हैं। हमारे यहाँ आयुष के 4 चिकित्सक पदस्थापित हैं जो आपको स्कूल में विजिट करते हैं, आंगनबाड़ी में विजिट करते हैं और वहाँ बच्चों का जांच करते हैं, हम चिकित्सीय लाभ भी प्रदान करते हैं और जो जरूरत होता है उसको रेफर भी किया जाता है। अभी तत्काल में मेरे यहाँ 3-4 प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जैसे से एक प्रोग्राम चल रहा मेरा नन्हा सा दिल। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष के सभी बच्चों का सत्य साई हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से आए हुए चिकित्सक दल जांच करते हैं और जांच करने के बाद अगर किन्हीं में कोई भी जन्मजात हार्ट की बीमारी का पता चलता है तो उनका उन लोग लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं। लाइन लिस्टिंग करने के बाद उनका इको करेंगे, इको के बाद उनको अगर उसमें बीमारी निकलेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से ले जाकर सत्यसाई हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा, उनका ऑपरेशन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बुलाया भी जाएगा और जब जब उनका फॉलोअप भी होगा तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग बुलाते हैं, करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी 100 Days TB प्रोग्राम भी चल रहा है, उसके अंतर्गत पूरे सदर ब्लॉक में 52 गांव का चयन किया गया है। मतलब यहाँ पहले TB के या तो केसेस थे या वैसे पॉपुलेशन का वास है जिनमें TB होने की संभावना ज़्यादा है, तो वैसे तरह से सभी जगह हमारे यहाँ कैंप लग रहा है। जैसे कि आज भी मेरे यहाँ पौता में कैंप लगा हुआ है जिसमें कि TB के जांच के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य शिविर भी लगा हुआ है। आयुष्मान आरोग्य शिविर का मतलब हुआ कि हम लोग वहाँ पर NCD का भी जांच कर रहे हैं, जितने भी गैर संचारी रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज

0: चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे आपको अन्य भी जो बीमारियां हैं उनका भी वहाँ जांच होता है और मुफ्त में उनका इलाज भी और परामर्श भी दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको मुफ्त में एक्सरे की जो पोर्टेबल जो एक्सरे है वो मशीन आई हुई है, उनके द्वारा वहाँ जो भी 14 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं या लाभार्थी हैं उनका एक्सरे किया जा रहा है। और साथ साथ जो भी आपको लक्षण वाले हैं, लक्षण में जैसे हो गया जिन्हें को 2 सप्ताह से खांसी हो, जिनको 2 सप्ताह ज्यादा बुखार हो, जिनका वजन घटता हो, जिनको खांसी में खून आता हो, जिनको थकावट लगता हो, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, या जिन्हें को गला में गांठ उठो, जो भी चीज़ हो, उन सब का भी वहाँ जाँच किया जा रहा है। और जाँच में जिनको लक्षण है उनको वहाँ तत्काल उनका बलगम लिया जा रहा है और उसको ट्रूनेट और नेट से जांच किया जाएगा और जांच में पॉजिटिव आने पर उनको टीबी की दवाइयां चलेगी। साथ साथ हम लोग एक और जांच करते हैं CYTB स्किन टेस्ट। इसमें वैसे जो लाभार्थी हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है उनका हम लोग जांच करते हैं और इससे पता चलता है कि उनमें टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं, बीमारी नहीं, लक्षण की बात नहीं है। अगर उनमें संक्रमण है तब भी हम लोग उसको TPT देते हैं, माने TB प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, जिससे कि उनका सही से समय पर इलाज हो। और हमारा जो अभी जो लक्ष्य चल रहा है कि टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत टीबी मुक्त झारखंड और टीबी मुक्त पंचायत को बनाना है, उसको हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने जैसे 15 और 18 तारीख को हमने राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया, जिसमें कि 1 से लेकर 19 तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को हम लोग कृमिनाशक दवाई खिलाए हैं। और 28 तारीख से लेकर 30 तक एक नेशनल वाइड प्रोग्राम चल रहा है हमारा पल्स पोलियो, जिससे कि सभी लोग जानकार है, सभी लोग जान रहे हैं। पिछला जो हमारा पल्स पोलियो हुआ था वो अगस्त 24 में हुआ था, उसके बाद हम लोग अभी कर रहे हैं। 28 जून को बूथ पर हम लोग बच्चों को दवा पिलाएंगे, 0 से 5 साल के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं के लिए एक तो सुविधा जो केंद्र सरकार प्रायोजित है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, उसके तहत हर माह के 9 तारीख को हम लोग गर्भवती महिलाओं को बुला करके जांच करते हैं। और उसमें अगर कोई अति जोखिम वाली महिलाएं मिलती हैं, जैसे कि जिनका पूर्व में सिजेरियन हो गया हो, जिनको इनके साथ कोई भी डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कोई अन्य बीमारी हो, जिनका जुड़वा बच्चा हो, जिनको अगर बच्चा का पोजीशन अगर सीधा हो, माने जिनको प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में डिलीवरी के समय दिक्कत होगी, उन लोग हाई रिस्क को हम लोग अलग से महीना के अंतिम बुधवार में हम लोग उनका भी जाँच करते हैं। और जाँच यहाँ मुफ्त में होता है, यहाँ जाँच के अलावा उनका जो भी आपको अल्ट्रासाउंड हो गया, चाहे ब्लड की जांच हो गया, वो हम लोग यहाँ मुफ्त उनको सेवाएं देते हैं। और ये सेवाएं आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ साथ हमारा PHC में भी उपलब्ध है। हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें बहुत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मेरे CHO वहीं रहती हैं
1: जी,
0: तो वैसी स्थिति में वहाँ तो मिलता ही मिलता है। अभी जो बरसात का समय आने वाला, अभी तो देखिए मलेरिया नाशक माह मना रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग को बचना ही है। जैसे फुल बाँह, फुल पैंट जो पहनना, हमको कपड़ा पूरे बदन को ढक के हमको पहनना ही है। साथ साथ कहीं भी बारिश का पानी जमा हो रहा है, चाहे टायर में, गमला में, कहीं भी, चाहे कूलर में, उसको समय पर बदलिए, उसको पानी को हटाइए, वो हमको देखना है। अगल बगल को साफ सफाई करना हमको है, जहाँ भी गंदा पानी, जहाँ की चापाकल का पानी पी रहे हैं या कुआं का पानी पी रहे हैं, उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डलवाइए और चापाकल का पानी आप छान के पीजिए।
2: आज की इस बातचीत में हमें यह समझने का अवसर मिला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाकर हम स्वयं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। कहा जाता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस भावना को सबसे अधिक साकार करती है यहाँ की नर्सें। स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले हर मरीज की देखभाल, सही समय पर उपचार, गर्भवती महिलाओं की निगरानी, नवजात शिशुओं की सुरक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने में नर्सों की अहम भूमिका होती है। उनकी मेहनत, संवेदनशीलता और समर्पण से लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। आइए आज जानते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की नर्स की क्या भूमिका होती है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
3: नमस्कार, मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं एक ANM हूँ। मैं मेरू आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यहाँ पे हर चीज़ का निशुल्क उपचार होता है, जैसे BP शुगर हो गया, ये सब चीज़ का जांच होता है, मलेरिया टेस्ट होता है, यहाँ पे मुफ्त में दवाई दी जाती है। किसी तरह का भी कोई लोकल प्रॉब्लम हो, जैसे छोटा मोटा बुखार, सर्दी, खांसी ये सब का यहाँ पे इलाज होता है। यहाँ गर्भवती महिला

0: महिलाओं एवं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे चिकित्सा के रूप में बहुत सारे लाभ मिलते भी हैं, जिसका वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जो बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं उन लोगों को स्टिक, वॉकर, ये सब वगैरह भी यहाँ से वितरण किया गया है। और बहुत सारे प्रोग्राम है किशोर किशोरी को लेके, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका बहुत सारा प्रोग्राम भी चलता है। नमस्कार।
1: मेरा नाम अनीता कुमारी है और मैं यहाँ मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक नूरा में एनएम हूँ। और हमारे यहाँ टीकाकरण होता है जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक। और हमारे यहाँ मतलब दो डॉक्टर भी हैं, एक गायनो और एक आयुष की मैम है। और बच्चे लोगों को भी इलाज होता है यहाँ पे। गर्भवती जो होती है उनका भी यहाँ टीटी का इंजेक्शन पड़ता है और आयरन की दवा और ये कैल्शियम, ये सभी दवा उनको मिल जाती है। ये सुविधाएं उपलब्ध होती है यहाँ पे। और बच्चे लोगों को जो फीवर वगैरह आता है वो सब की दवा भी यहाँ पे मिल जाती है। 0 से लेकर के जो BCG होता है उस समय से लेकर 16 साल के इस तक जो पड़ता है इंजेक्शन, टीकाकरण, वो सारे सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। जो मौसमी जो बीमारियां आती है ये सबसे बचाव के लिए तो टीकाकरण मतलब किया जाता है। तो उससे बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए, ये सारी मतलब की बचाव के लिए सारा टीकाकरण यहाँ पे पड़ता है। और गर्भवती माता को टिटनेस का जो मतलब होता है वो बच्चे को और माँ को दोनों की सुरक्षा के लिए टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे जो मैडम लोग रहती है ना, डॉक्टर मैडम जो हैं, वो यहाँ पे जैसे कि नूरा से या फिर और भी कहीं से भी अगर कोई आते हैं तो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह उपलब्ध है, चेकअप वगैरह होता है और जांच वगैरह भी होता है यहाँ पे। हमारे यहाँ LT है और NM है, सब है। तो हर प्रकार की मतलब जो सुविधाएं हो पाती है यहाँ पे सब हो जाती है।
2: हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है खिरगांव हबीबी नगर से। मेरा नाम काजल कुमारी हुआ। हम आंगनबाड़ी केंद्र में जो गर्भवती न्यू मैरिड रहती है उसको जाके डोर टू डोर प्रशासन करते हैं कि ताकि वो आए और आंगनबाड़ी से जुड़े। आंगनबाड़ी में जुड़ने में बहुत सारी लाभ मिलती है, जैसे कि NC जांच हो गया, आयरन गोली, कैल्शियम टैबलेट, ये सब हम लोग की सुविधा आंगनबाड़ी से मिलती है। वो लोग जानते हैं कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ते सही है, इनके द्वारा ही हमको संपर्क करती है या फिर हम ही उनको, न्यू मैरिड रहती है चाहे बच्चा रहता है, हम जानते हैं कि उसके घर में छोटा बच्चा है, तो हम उनको घर में जाके बुला के बोलते हैं कि आपको सुई पड़ेगा, आप आइए। जैसे कि अगर सदर में हुआ, सदर सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो वहीं से बन जाता है, हम लोग खुद बनाते हैं। और अगर नगर प्राइवेट में हुआ तो नगर निगम की द्वारा ही बनती है। सदर हॉस्पिटल में हुआ तो वहाँ से 1000 प्रत्याशन राशि मिलता है, उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र भी वहाँ से मिलकर बनता है और वहाँ एक पैसा नहीं लगता है।
3: सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन सेवाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क या रियायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों की नर्सें और अन्य स्वास्थ्य कर्मी इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराते हैं और उन्हें समय पर सेवाओं का लाभ दिलाने में सहायता करते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इस सरकारी योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए और उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं तभी सफल होती है जब हर व्यक्ति तक उनका लाभ समय पर पहुंचे। जागरूक नागरिक और समर्पित स्वास्थ्य कर्मी मिलकर एक सशक्त, खुशहाल और समाज का निर्माण करते हैं। स्वस्थ समाज का निर्माण केवल सरकार से नहीं बल्कि हर नागरिक की जागरूक पहल और जिम्मेदारी से होता है। स्वस्थ समाज का निर्माण केवल सरकार से नहीं बल्कि हर नागरिक की जागरूक पहल और जिम्मेदारी से होता है। जब लोग स्वयं आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं तभी बदलाव की नई शुरुआत होती है। आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।
4: तो अभी आप सुने थे कार्यक्रम आपकी योजना का पुनः प्रसारण। संकलन एवं वाचन दिया था प्रकाश कुमार राणा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार।

तो अभी आप सुने थे कार्यक्रम आपकी योजना और समय हो चला है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स का। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत में सुनते हैं कुमार शानू और साधना शरगम की आवाजों में गाए दामिनी फिल्म का ये नगमा।

तो अभी आपने सुना इस गीत को मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज में फिल्म राजा साहब से। और आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गाए इस गीत को।

और आप सुन रहे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आसला आशा भोसले और सब्बीर कुमार की आवाजों में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। तो आइए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र।

है। अब आप मुनीष शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्नपत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए।

श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन

कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खरगे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खरगे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही ये संभव है। श्री खरगे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खरगे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री प्रमुख सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए

एक सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृहमंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके फरमाइशी गीतों के साथ कार्यक्रम आपके चाहत में। तो बिना वक्त गवाए प्रोग्राम का पहला नगमा सुनाते हैं आपको, और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है न्यू एरिया दूसरी गली से। आप हैं अनन्या, बुलबुल, प्रियांशु और टिनटिन, और आप हैं डेमोटार हजारीबाग से श्रुति, राधिका, मिली, मधु, विनीता, रघु, आशीर्वाद, गोपाल, भैरव जी, मधुसूदन, और आप हैं चौथे से सुधीर, छोटे, अमन, माला, अजीत, नयन और इनके ढेर सारे दोस्त। और इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप हैं मटवारी से अमित चटर्जी, करुणा, बन्नी।

इस गीत के लिए फरमाइश भेजी थी आप हैं केरेडारी से देवदत्ता तिवारी, सचिदानंद मंजूबाला और संतोष कुमार। और इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी थी आप हैं हजारीबाग से रश्मि कुमारी, रितेश कुमार, पूजा पांडे, दीपाली कुमारी, हर्षित कुमार और अभिनव कुमार। और प्रोग्राम में का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं और इसके लिए फरमाइश भेजी है भरकट्टा से आप हैं हेमंत कुमार, संगीता भारती, साव कुमार, तुषार, पूजा, विक्रम और नितिन। और आप हैं पचमंदी रोड हजारीबाग से महावीर लाल चौरसिया और कुंती चौरसिया। तो आइए

तो अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9 हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: के पास है। तेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया।

0: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से

0: सीमापार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुँचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सू जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफेलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर

0: जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 2331048 2371717 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंजल @YIRNewsAlerts पर भी #AskYIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज एनकेफेलाइटिस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई है
0: जी।
2: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीजेज हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
0: जी।
2: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता। और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो जरूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका, सैंडफ्लाई का नाम जैसे आपने लिया वो उससे जो है वो होता है। और खास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूंगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
0: जैसे डेंगू का
2: है, डेंगू और चिकनगुनिया का। मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, व्हाइट ब्लैक इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
0: जी।
2: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
0: रात के
2: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातःकाल
0: अर्ली मॉर्निंग
2: का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं और खास करके
0: शिफ्ट में आते हैं
2: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की जरूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है, कि वो जानवरों पर ज्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो

0: मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
1: देखिए, डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
0: और चिकनगुनिया में?
1: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
0: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष
2: जी? ये तीनों बुखार जो है पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए, और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
0: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
2: में। ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
0: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी?
3: जी नमस्ते।
0: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है
0: जी।
3: पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
1: देखिए, जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है तो ये बीमारियां, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
0: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप
1: अपनी
0: बात जारी रख सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए,
0: तो
1: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
2: एक मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक से लेकर के 3% तक, जो ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
0: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाए संक्रमण का?
2: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, यह जांच अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि ये जिसकी की सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफीकोट और जो अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर के सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं, और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी, यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: अभी एक योगेश जी का एक प्रश्न और था कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक

0: संदेश मैं देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार, चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके, और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर की सफाई भी बहुत
0: जरूरी है, कूलर की सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं रगड़ना भी
0: जरूरी, रगड़ना जरूरी है। उसके पीछे साइंस यह है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
2: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी कोई बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
3: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पैरासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ, अब यह है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
4: नमस्ते।
1: नमस्ते।
4: नमस्ते जी। नमस्ते
1: जी। जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
4: जी मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
0: देखिए,
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
3: शुरू में हम लोगों ने इसके संबंध में
1: हम अभी तक यही चर्चा कर रहे हैं, तो फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
0: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है, जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय हैं फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उसके उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई का प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सोल्यूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में।
3: अमित जी आपका विचार बहुत उत्तम है, शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीजें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें, वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है। और ये और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरे बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज्यादा प्रकोप है वहां पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो है वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीड कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी,
0: जो रुक जाता है पानी, उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 डेज।
0: तो लगभग लगभग ये 7 डेज का उसका एडल्ट निकलने का टाइम और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है। जैसे पहले डीडीटी का होता था, आजकल डीडीटी क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता है चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
6: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

जहां तक हल्की फुल्की भूमिकाओं की बात है तो फिल्म चमेली की शादी सन 1986 में आई थी। इस फिल्म को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: फिल्म।
1: याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मां कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। याराना का ये गाना सुनिए।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने एक समय में कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जैसे उन्होंने फिल्म चोर पुलिस बनाई थी जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अमीर आदमी गरीब आदमी, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई थी जिसका नाम था लंबाई चौड़ाई, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिल्म रूदाली अमजद खान के आखिरी रोल्स में से एक बन गई। सन 1986 में अमजद खान का मुंबई गोवा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही अमजद खान का वजन बहुत बढ़ने लगा था। वैसे भी वो चाय के बहुत शौकीन थे और दिन भर में कई कप चाय वो पी जाते थे। इसका भी उनके वजन पर गहरा असर पड़ा। सन 1992 में दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। एक सशक्त अभिनेता इस संसार से चला गया। रह गई उसकी फिल्में, उसकी आवाज में उसके संवाद और उसकी यादें।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमजद खान पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

तो अभी आपने सुना आसफ भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में गाए इस गीत को, और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में गाए फिल्म परिवार का।

तो आप सुन रहे कार्यक्रम रजनीगंधा और अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को। और आइए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं फिल्म बरखा फिल्म का ये नगमा और आवाज है लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे 1959 में आई गूंज उठी सहनाई फिल्म के गीतों को। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए राजेंद्र कुमार, अमिता, और म्यूजिक संगीत तैयार किया है वसंत देसाई ने और गीत के बोल लिखे हैं भरत ब्यास ने। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गाए प्रोग्राम का पहला नगमा।

तो आप सुन रहे कार्यक्रम एक फिल्म से और आज आप सुन रहे हैं गूंज उठी सहनाई फिल्म के गीतों को। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए प्रोग्राम का।

तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में गाए इस गीत को, और आइए आगे सुन रहे हैं गीता रॉय और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गीत को।

0: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी

0: दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the
3: House. I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt this debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
2: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in parliament. With Anupam Mishra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi today interacted with Pawan Chandana and Naga